सुप्रभात अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 3 जुलाई 2026 शुक्रवार, अषाढ़ कृष्ण पक्ष तृतीया 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्य उदय हुआ है 5:25 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:29 पर।

यकीन रखने वाले बलिदानी महापुरुषों ने संसार में चारों तरफ फैली नफरत की आंधी को हटाकर मानवता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। संसार बटा हुआ है, यह बिखराव में है, इसे एकजुट और जागरूक करके मानव एकता कायम करने वाले संतों भक्तों ने महान बलिदान दिए हैं। उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए ही मानव एकता दिवस का आयोजन किया जाता है।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 10। आज का ये कार्यक्रम संगीतकार रविंदर जैन पर आधारित है। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट किया भारत सोपोरी ने, प्रस्तुतकर्ता व निर्देशन आरजे किरनी का।

0: से जुड़े मेरे व पांडव, मेरे व पांडव पुत्रों ने बोलो संजय क्या,
1: संजय
0: क्या किया, संजय वाच।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। नमस्कार प्यारे श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे संगीतकार की दुनिया में जिनके संगीत ने न केवल बॉलीवुड बल्कि हमारे दिलों में भी एक अलग जगह बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार रविंद्र जैन की, जिनकी धुनों में प्यार, भक्ति और संघर्ष की कहानियाँ छुपी हुई है। आज हम जानेंगे रविंद्र जैन के जीवन की उन पहलुओं के बारे में जिन्होंने उन्हें एक अमर संगीतकार बना दिया। तो आइए इस संगीत यात्रा में हमारे साथ जुड़िए।

रविंदर जैन सुप्रसिद्ध गायक, गीतकार, संगीतकार और संगीत निर्देशक थे, जिनका जन्म 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। इनके पिता इंद्रमणि जैन थे, जो कि संस्कृत पंडित और आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। इनकी माता किरण जैन गृहिणी थी। रविंदर जी के 6 भाई और एक बहन थी। जब रविंदर जी का जन्म हुआ तो एक दिन बाद ही उनकी आंखें नहीं खुली। तब डॉक्टर ने सर्जरी के जरिए उनकी आंखें खोली, लेकिन उन्हें तब भी दिखाई नहीं देती।

रविंदर जी की शुरुआती शिक्षा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के ब्लाइंड स्कूल में हुई थी। 4 साल की उम्र में ही उनके पिता ने उनकी संगीत की शिक्षा की व्यवस्था की, जिसके लिए उन्हें मिनी हारमोनियम दिया। उन्होंने जीएल जैन, नथुराम शर्मा और जनार्दन शर्मा जैसे दिग्गजों से संगीत की शिक्षा ली। उसके बाद रविंदर जी अपने चचेरे भाई के कहने पर कोलकाता आ गए। वहां उन्होंने 10 साल तक संगीत की आगे की शिक्षा ली। कोलकाता में ही रविंदर जी ने 5 रेडियो स्टेशन पर ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें नकार दिया गया।

रविंदर जैन को पहली नौकरी बालिका विद्या भवन में 40 रुपए महीने पर मिली। इसी शहर में उनकी मुलाकात पंडित जसराज तथा पंडित मणिरत्नम से हुई। नई गायिका हेमलता से उनका परिचय हुआ। वह मिलकर बांग्ला तथा अन्य भाषाओं में धुनों की रचना करने लगे। हेमलता से नजदीकियों के चलते उन्हें ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग कंपनी से ऑफर मिलने लगे। एक पंजाबी फिल्म में हारमोनियम बजाने का मौका मिला। सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुति के 151 रुपये तक मिलने लगे। इसी सिलसिले में वे हरिभाई जरीवाला संजीव कुमार के संपर्क में आए। वर्ष 1968 में राधेश्याम झुनझुनवाला के साथ मुंबई आए तो पहली मुलाकात पार्श्व गायक मुकेश से हुई।

रविंदर जैन का पहला फिल्मी गीत 14 जनवरी 1972 को मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड हुआ। रविंदर जैन ने अपनी संगीत यात्रा की शुरुआत 1974 में फिल्म कांच और हीरा से की, हालांकि उन्हें असली पहचान 1980 में आई फिल्म चांदनी से मिली। चांदनी का संगीत न केवल उस समय के दर्शकों के बीच हिट हुआ, बल्कि आज भी ये लोगों के दिलों में जिंदा है।

0: खिड़कियों से
1: दरवाजा खटखटाया, लगता है कोई आया।
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।
1: मम्मी पापा डैडी से

के संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक धुनों का अद्भुत मिश्रण था जो उन्हें बाकियों से अलग करता था। वह संगीत के ऐसे साधक थे जिन्होंने अपनी धुनों से फिल्म की कहानी को न सिर्फ सजाया बल्कि उसे जीते जी महसूस भी कराया। 1973 में आई फिल्म सौदागर के लिए रविंदर जी ने गाने लिखे और कंपोज भी किए जिससे उन्हें पहचान मिली।

1987 में रामानंद सागर के निर्देशन में बने रामायण सीरियल ने इन्हें अमर बना दिया। रविंदर जी ने लगभग 200 फिल्मों और रामायण, श्री कृष्ण, अलिफ लैला जैसे धारावाहिकों के लिए अपना संगीत दिया था।

रविंदर जैन जी ने कई हिट मूवीज और धारावाहिकों में अपने संगीत का जलवा बिखेरा। इस सूची में सौदागर, चोर मचाए शोर, चित चोर, अखियों के झरोखे से, राम तेरी गंगा मैली, हीना, विवाह, एक विवाह ऐसा भी जैसे फिल्में रही। उन्हें संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक धुनों का अद्भुत मिश्रण था जो उन्हें बाकियों से अलग करता था।

रविंदर जैन का संगीत सिर्फ फिल्मी गानों तक ही सीमित नहीं था, उनके संगीत में आध्यात्मिकता की गहरी छाप थी। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उनके भक्ति गीतों ने भारतीय संगीत को एक नई दिशा दी। सत्यम शिवम सुंदरम जैसे गीत उनके जीवन और भक्ति के प्रति गहरे प्रेम को दर्शाते थे।

उनके भक्ति गीतों में एक अद्भुत शक्ति और शांति का एहसास होता था। इन गीतों ने उन्हें न केवल बॉलीवुड में बल्कि भारतीय संगीत के दूसरे क्षेत्र में भी एक महान कलाकार के रूप में स्थापित किया। जय हनुमान साई बाबा जैसे धारावाहिकों में अपनी आवाज भी दी थी। रविंदर जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार आदि मिले थे। उन्होंने उजालों का सिलसिला नाम से उर्दू शायरी लिखी, जिसके लिए उन्हें 1997 में उत्तर प्रदेश हिंदी उर्दू साहित्य समिति से साहित्य पुरस्कार मिला।

9 अक्टूबर 2015 में शरीर के कई अंग खराब होने के कारण मुंबई में उनका निधन हो गया। इनके लिखे और गाए हुए गीत और भजन आज भी लोगों के दिलों और दिमाग पर छाए हुए हैं। रविंद्र जी ने साबित कर दिया कि अगर इंसान में टैलेंट और कुछ इच्छा कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी परेशानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।

आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने रविंद्र सेन के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उनका संगीत, उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा और उनके अनमोल धरोहर हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। रविंद्र सेन का संगीत न केवल उनके समय में बल्कि आने वाले पीढ़ियों के दिलों में भी जीवित रहेगा। आपका धन्यवाद इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 10। आज का कार्यक्रम आधारित था संगीतकार रविंदर जैन पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट किया भारत सोपोरी ने, कार्यक्रम को लिखा, निर्देशन दिया और प्रस्तुत किया आरजे किरने ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ

पेश करें हम। आपने ट्यून किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सुपोई। दोस्तों, कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके कलाकार, लेकिन एक असली कलाकार वही है जो अपनी कला से समाज को आईना दिखाए और अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों को छू ले। मगर इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं है, सही दिशा का होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप अभी अभी थिएटर की दुनिया में कदम रख रहे हों, यानी हमारे नवोदित कलाकार, या फिर आप बरसों से मंच से जुड़े हों, आप सभी के हुनर को निखारने और आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए आज से हम ला रहे हैं अनमोल वचन, एक बेहद खास शख्सियत की आवाज में। जी हाँ, आज से हम फाइव एलिमेंट्स थिएटर ग्रुप के संचालक और रंगमंच की दुनिया के जाने माने रंगकर्मी श्री मानव मेहरा जी आपके मार्गदर्शन हेतु इस श्रृंखला में रहेंगे। ये वेद थिएटर ग्रुप और कल्चरल सोसाइटी अम्बाला की ओर से रंगमंच और रंगकर्मियों के मार्गदर्शन के लिए एक कोशिश और एक पहल। मानव मेहरा जी, आज से हमारे सभी उभरते हुए और अनुभवी कलाकारों को अभिनय की बारीकियां सिखाएंगे इस रेडियो श्रृंखला में, और बताएंगे कि एक सफल मंच कलाकार बनने के लिए किन तत्वों की जरूरत होती है, कार्यक्रम रंगमंच की ओर में। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू होने जा रहा है कला और कलाकार का ये खूबसूरत सफर, सिर्फ रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz।

जानेमन, इस वीडियोस में हम फिल्में देख रहे हैं, नहीं रिव्यू करने के लिए नहीं, बल्कि एक्टिंग सीखने के लिए। और आज की फिल्म एक्टर्स के लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि यहां ना कोई ड्रामेटिक एक्टिंग है ना कोई हीरोगिरी, सिर्फ दो एक्टर्स हैं और उनकी अंदर की भूख। सुधेंदु राय की फिल्म सौदागर, दो लीड एक्टर्स अमिताभ बच्चन साहब और नूतन जी, और ये फिल्म इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो पसंद किए जाए। ये फिल्म इनसे कहती है बस आप सच बोलो। अमिताभ बच्चन साहब का करैक्टर लाउड नहीं है, अग्रेसिव नहीं है, हीरोइक बिल्कुल भी नहीं है, और यही सबसे बड़ा लेसन है। बच्चन साहब यहां डिजायर को चिल्ला के नहीं दिखाते, वो डिजायर को दबा के दिखाते हैं, उसे दबाकर रखते हैं। उनकी आवाज कंट्रोल्ड है, बॉडी स्टिफ है, मूवमेंट्स मिनिमल है, लेकिन अंदर अंदर एक भूख चल रही है। डिजायर को एक्टिंग में एक्सप्रेस करने का मतलब लाउड होना नहीं, कभी कभी डिजायर जितना शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। बच्चन साहब का करैक्टर प्यार नहीं करता, वो ओन करना चाहता है, और पोजीशन एक्टिंग में सबसे मुश्किल चीज होती है, क्योंकि पोजीशन डायलॉग्स या लाइन में नहीं होता, वो होता है नजरों में, पॉज में, कंट्रोल में। अगर आप पोजीशन को इमोशनली दिखा रहे हो तो आप गलत जा रहे हो। पोजीशन हमेशा इमोशन को दबा के खेला जाता है। अब बात करते हैं नूतन जी के काम की। एक बार बताऊं, ये रोल अगर किसी गलत एक्टर को दे दिया जाता ना तो वीक लग सकता था, लेकिन नूतन जी इसे वीक नहीं बनने देते। उनका करैक्टर कम बोलता है, ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करता, लेकिन वो जानती हैं कि वो क्या दे रही हैं और क्या खो रही हैं। उनकी स्ट्रेंथ नॉइज में नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ सेल्फ अवेयरनेस में है। स्ट्रॉन्ग फीमेल परफॉर्मेंस का मतलब लाउड होना नहीं होता, कभी कभी रिएक्शन कम करना एक्टिंग को ज्यादा पावरफुल बना देता है। सौदागर का सबसे बड़ा लेसन यहीं से निकलता है। बच्चन साहब का करैक्टर कंट्रोल से खेलता है, नूतन जी का करैक्टर एक्सेप्टेंस से खेलता है। एक कुछ लेना चाहता है, दूसरा जानता है कि वो क्या दे रहा। बच्चन अंदर से दबा हुआ टेंशन, और नूतन जी अंदर से साफ क्लैरिटी, और दोनों बिना ड्रामेटिक सीन्स के फिल्म को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। इस फिल्म में इंटिमेसी है लेकिन रोमांस नहीं है, और ये एक्टर्स के लिए बहुत एडवांस एरिया है। बच्चन साहब इंटिमेसी को कंट्रोल से खेलते हैं, नूतन इंटिमेसी को समझ के एक्सेप्ट करती है। अगर आप इंटिमेसी को रोमांस बना देते हो तो सौदागर जैसी फिल्म आपके हाथ से निकल सकती है, नहीं? अच्छा चलो अब बात करते हैं होमवर्क की। तो जरा सोचो, अगर आप किसी को सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहते हो क्योंकि आप अकेला महसूस करोगे, तो उस फीलिंग को लिखो, वही फीलिंग आपको बेटर एक्टर बनाएगी। इस फिल्म को बच्चन साहब के लिए देखो, नूतन जी के लिए देखो, और सबसे ज्यादा अपने लिए देखो। और हाँ, कमेंट में लिखो कि किस एक्टर का काम आपको ज्यादा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि जो डिस्टर्ब करे वही एक्टर को ग्रो करे।

0: राज नेहरू जी ने
1: कश्मीर शिव दर्शन में माता ललेश्वरी का जो ये ललवाक है बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी महत्वता आज के विज्ञान में भी आपको उसकी रिफ्लेक्शंस कहीं देखने को मिलेंगी, क्वांटम साइंस में देखने को मिलेंगी। ललदत्त कहती है कि शिवची जैविल जाल वहरेवित, शिवची जैविल जाल वहरेवित क्रंजन मंशी तरित कियत, जिंदने वुचहन अधकार मरित पान मज पान कड व्यसरित कियत। ललदत्त कहती है कि शिवची जैविल जाल वहरे, शिव जो है जिसे वो शिव कहती है, जिसे वो परम शिव कहती है, जिसे हम मंदिरों में, हम उसे पहाड़ों में, हम उसे योगी के रूप में देखते हैं, ललदत्त उसी शिव को कैसे देखती है? वो कहती है शिवची जैविल जाल वहरे, शिव जो है एक सूक्ष्म जाले की तरह है, जैसे मकड़ी का जाला होता है, वो कहती है शिव एक सूक्ष्म मकड़ी के जाले की तरह है। क्वांटम साइंस उसे कहता है कि कॉन्शियसनेस कि इज द फाउंडेशनल फैब्रिक ऑफ ऑल द मैनिफेस्टेशंस। वो ललदत्त भी वही कहती है कि शिव ची जैविल जाल वहरे, यानी क्वांटम साइंस में जैसे हम आज मैटर कहते हैं, जो ये पेड़ पौधे पहाड़ ये हमारी हड्डियां शरीर आसमान धरती ये सब मैटर है, लेकिन मैटर को भी जब आप क्वांटम डीपेस्ट लेवल पे देखता है, वो कहता है मैटर जो हमें दिखता है वो है नहीं, यानी जो हमें दिखता है वो है नहीं, वो जो है वो हमें दिखता नहीं है। तो साइंस कहता है, क्वांटम साइंस कहता है कि मैटर को अगर डीपेस्ट लेवल पर देखा जाएगा तो आपको वहां कुछ भी नहीं मिलेगा, वहां सिर्फ क्वांटम फील्ड ऑफ एनर्जी है, और वही जो एनर्जी जैसे इलेक्ट्रॉन्स की फील्ड है, फोटॉन्स की फील्ड है, वही इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स की फील्ड जो है मैटर को मैनिफेस्ट करती है। और वही देखिए ललदत्त भी कहती है शिव छी जैविल जाल वहरे विद क्रंजन मंशी तरित कियत, देखने वाली चीजें जो हमें अलग अलग दिखती हैं वो अलग अलग तो है, मैटर हमें अलग अलग दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो गहरी यूनिफाइड फील्ड है वो हमें नहीं दिखती, और वो क्वांटम साइंस भी कहता है और ललदत्त भी कहती है शिव छी जैविल जाल वहरे विद क्रंजन मंशी तरित कियत, ना हमारे इंजर पिंजर अस्थि पिंजर सब एक है, उसी के वो उसी का मैनिफेस्टेशन है। फिर कहती है ललदत्त कहती है कि ये सब उसी फील्ड की एक मैनिफेस्टेशन है, यानी जिसे वो शिव कहती है, वो कहती है उसी शिव का ये विस्तार है और वो हमारा शरीर जो है उसी सेम फील्ड का बना हुआ है। फिर कहती है जिदना विशान अधकार मरित, मतलब जीते जी उसको नहीं देखोगे तो फिर कब देखोगे, मर के देखोगे। वो मरना और जीना ये वो वाला जीना नहीं जिसे हम जो इंसान देखता है जीना और मरना, वो हम जो हैं अभी जिसको हम जीवन कहते हैं यही तो मरण है, असल में हम मरने वाला जीवन जी रहे हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में सब जी रहे हैं, मैटर के साथ सब जी रहे हैं, मैटर की इल्यूमिनेशन में, मैटर की जो लालसा में सब जी रहे हैं, तो वो तो मरना है, उसे वो मरना कहती है। असली जीना वो कहती है जिंदा मुछान अरकत मरित, यानी मर के तुम उसको नहीं देख पाओगे, आप बाहर रहोगे तो कभी देख नहीं पाओगे, उसके लिए जीना पड़ेगा और जीना के लिए आपको अंदर की यात्रा में जाना पड़ेगा। जिंदने वुछानात कर मरित पानमज पान कड़ व्यसरित कियत, यानी भीतर उतरना पड़ेगा, स्वयं को पहचानना पड़ेगा, अंदर खोजना पड़ेगा, मतलब वो खोजने की जो यात्रा है बाहर नहीं है, खोजने की यात्रा अंदर है, यानी जिस शिव को हम बाहर खोजते हैं वो असल में हमारे अस्तित्व के भीतर ही उपस्थित है, यानी जो हमारी एग्जिस्टेंस है उसी एग्जिस्टेंस के अंदर ही वो अवेलेबल है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते हैं। तो जीते जी यानी उस जीवन उस जीने की राह पर जब हम चले, उस अंदर की भीतर की राह पर जब हम चले, तो पहचानना ही साधना है, उस पहचानने को ही हम साधना बोलते हैं। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ेगी हमारी पहचान उस शिव के साथ बढ़ेगी, और एक समय ऐसा आएगा जब हम वही शिव बन जाएंगे, क्योंकि हमारी पहचान ही शिव बन गई होगी, और हम कहेंगे अहम शिवम, हम कहेंगे शिवो हम। कितना ही ब्यूटीफुल वाक हजारों साल पहले ललदत्त का दिया हुआ।
2: तुम बोजान एफ एम 90.0 रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रूजिव पनिन पसंदीदा बात।

नमस्ते दोस्तों, आज की इस प्रोग्राम में हम आपको अपनी पसंद के चंद नगमे सुनवाएंगे। हमें उम्मीद है हमारी पसंद आप जरूर एक्सेप्ट करेंगे। मैं हूं इस कार्यक्रम में आपका मेजबान रमेश मराठा।

हम हैं यहां मुसाफिर, चलते हैं बेदर्द मौसम में अपनी अपनी मंजिल की तलाश है। शायद कभी मील के पत्थर को छूते और तुम्हारी मांग में सिंदूर भी भरते, तुम शरीक सफर बन पाते, पर यह राहें ही दुश्वार और पथरीले, इन पगडंडियों में फिसलन है। और अब ये रास्ते गीले हो चुके हैं।

जब तुम लौट आओगे हमारी दुनिया में, ये हवाएं फिजाएं इन कपकपाती धड़कनों को हम संभाल लेंगे। यरकानी पत्तों के इस मौसम में अपनी मखमली दुआओं से बज़्मे इलाही में शायद हमारी इल्तिजा, हमारी फरियाद सुनी जाए। हमने ये भी सुना है रब यही बसता है और उसकी रहमत का कोई हिसाब नहीं।

रहती पास पास, होती साथ साथ, शायद फुर्सत में हम तुम्हें चाहते, पर काश फुर्सत होती, दीवानेपन की हदों को दरकिनार कर ऐसा ख्वाब अपनी आंखों में बसाने से क्या हासिल, जिस ख्वाब की ताबीर ना हो। मिला तुमसे जो भी वो खामोश पानी की लकीरें जैसे ही है।

सरसराहट, रुखसार पे मुस्कुराहट, अन सुलझे सवालात, शब रोज ख्वाबों में दस्तक देना, पथरीले रास्तों को हरा कर मुझे मेरे भटकाव से मुक्त करना, यही तेरा एहसान था, तुम्हारा करम, तुम्हारी नवाजिश थी।

दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? अब चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

कल रात एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों में मेरी गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख में चौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला कर मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों है खफा एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने जिंदगी से पूछा, क्यों इतना दर्द दिया तूने, वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूं पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। सुकून मौसीकी में आप सभी का स्वागत है, और मौसीकी के इस दौर के बीच में आज के सफर में मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। ये मान लेना कि आगे क्या होगा, यही तो जिंदगी है, लेकिन जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूं, क्योंकि उतार चढ़ाव ही तो जिंदगी है। और हां, जिंदगी कभी एक जैसी तो नहीं रहती, कभी रुकती है पल भर को, तो कभी चलना शुरू कर देती है, क्योंकि एक जगह पर खड़ा हुआ तो पानी भी सड़ जाता है। इसी तरह से इंसान की जिंदगी के बीच में कभी खुशी आती है, कभी गम आते हैं, दिन है तो रात भी होती है, अंधेरे हैं तो सुबह के उजाले भी नसीब होते हैं, लेकिन कभी कभी वो दो लोग जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले, जीने और मरने की कसमें खाया करते थे, उनके ऊपर ऐसा वक्त भी आता है कि अपनी आवाज, अपनी बात अपने महबूब तक पहुंचाने के लिए उनको नगमों का सहारा लेना पड़ता है।

मोहब्बत तो अपने आप में एक सरमाया है, ये सबको नसीब नहीं होती। कुछ ऐसे खास किस्मत वाले होते हैं जिनको ऊपर वाले ने इस खास नेमत से नवाजा होता है। ये दौलत है, मोहब्बत सुकून है, मोहब्बत लक्ष्मी है, और लक्ष्मी से किसे प्यार नहीं होता। यूं ही हर कोई नहीं कहता कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।

और जब किसी भी वजह से दो प्यार करने वाले बिछड़ जाते हैं ना, तो फिर इनका दिल इस दुनिया में तो नहीं लगता, क्योंकि इनकी तो दुनिया ही एक दूसरे के साथ ही होती है। ये तो एक दूसरे से जुदा होकर रहने का सोच भी नहीं सकते। बिछड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं, लगेगा कि लगने लगा है पर लगेगा नहीं, और जो आवाज फिजाओं के बीच में गूंजेगी वो यही होगी, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं।

एक नामुराद बीमारी सी है ये मोहब्बत, फिर भी खींचती है अपनी तरफ, और ना चाहते हुए भी आदमी प्यार के समंदर के बीच में डूबता चला जाता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो खुद ही ये कह बैठता है कि मैं इस दलदल में क्यों फंसा। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं।

झरने की आवाज, जो पानी की आवाज है ना झरनों के बीच में से आती है, कई बार वो आवाज भी अपने महबूब के पांव में बची हुई पाजेब की झंझनाहट सी महसूस होती है और टप टप टप कर गिरती ये बारिश की बूंदें, ये भी अपने आप में मौसीकी का एक वो अंदाज लेकर चलती हैं जिससे सुकून मिलता है और महबूब अपने दिल की बात अपने दिलबर तक पहुंचाने के लिए आवाज देता है, तुझको पुकारे मेरा प्यार।

कितनी भी आवाज दो, लेकिन दुनिया की रस्म रिवाज बेबस कर ही देती है कि वो आवाज महबूब तक ना पहुंचे। न जाने कौन सी शिकायतों का शिकार हो गए हम, जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए हम। आवाज दे के हमें न तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ।

और जब बहुत यत्न करने के बाद भी मुलाकात नहीं हो पाती तो ऐसा लगता है कि ये दुनिया बेकार है। महबूब के बिना इस दुनिया के बीच में मेरा कोई भी अपना नहीं। जिंदगी से नफरत सी होने लगती है। 4 दिन की जिंदगी में मैं किससे कतरा के चलूं? खाक हूं मैं, क्या खाक पे इतरा के चलूं? दिल की आवाज सिर्फ इतना ही कह पाती है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं।

एक फकीर ने जिंदगी की क्या खूब मिसाल दी, मुट्ठी भरी रेत की और हवा में उछाल दी। लेकिन महबूब ने जो भेजा वो फूल नहीं, एक खत था, और फूल की शक्ल में दिल के सारे अल्फाज उसमें बयां हो रहे थे। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है।

ये कायनात, ये दुनिया, ये आबो हवा, ये पहाड़ों की खूबसूरत वादियां, ये तैरते हुए बादल, ये अपना अफसाना कहती हुई खूबसूरत हवाएं, कई बार ऐसा मदमस्त माहौल बना देती हैं कि इंसान तो क्या बादलों के लिए भी कहना पड़ जाता है, दीवाना हुआ बादल। आइए आप भी सुकून मौसीकी के इस रवानी के बीच में अपने आप को बहा लें। यही वक्त है, यही मौका है, तो इंतजार किस बात का।

बांसुरी की तरह है जिंदगी। इसमें बहुत से छेद रूपी बाधाएं हैं और जिसको इसे बजाना आ गया ना, उसे जिंदगी जीना आ गया। बांध कर मुझसे उड़ने को कहता है, मेरा कातिल ही मुझे जीने को कहता है। हर कदम देता रहा जो मुझको धोखा, बेवफा दोस्त वफा करने को कहता है। किससे करें फरियाद इंसाफ के लिए, मुझे लूटने वाला ही मेरे घर में रहता है। ना कर तजवीज तुम मुझसे मोहब्बत की, मेरे दिल में अरसे से एक बेमुरव्वत रहता है। फिर भी अगर मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता।

सोचता हूं कि ऊपर वाले ने इतनी बड़ी दुनिया के बीच में तो ऐसे शख्स क्यों बनाए जो सिर्फ और सिर्फ एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा देखते हैं। एक को चोट लगती है तो दर्द दूसरे को होता है। शायद यही मोहब्बत है। बेशक ना मिल पाए हूं, अलग अलग हूं, लेकिन फिर भी कभी कभी दिल में यह ख्याल तो आता है कि तुझको बनाया गया है मेरे लिए।

वायदा खिलाफी तो अक्सर मोहब्बत के बीच में देखी और सुनी जाती है, जिसे बेवफाई का नाम दिया गया है। बहुत वायदे कर लिए जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ एक ही वायदे हैं जो पूरे हो जाते हैं। इसीलिए कहता हूं, जो है उसी से शुरू करें, जहां है वहीं से शुरू करें, और अगर खास मौके के इंतजार में रहे ना, तो इन खास मौकों के इंतजार में करोड़ों सपनों को बर्बाद किया है। जो वादा किया है उसको अभी ही निभा लें, आने वाला कल पता नहीं एक पल भी आपको देगा या नहीं देगा।

हसीन मौसम हो, खूबसूरत फिजाएं हों और महबूब का साथ हो, तो मरुस्थल के बीच में भी बाहर सी लगती है। तू जो मिल जाए तो खुशियों का रेला कर दे, गम के मरुस्थल में बरसात का ढेला कर दे। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद तो वो है कि जो मेले में भी अकेला कर दे। और ऐसे हसीन खूबसूरत आशिकाना मौसम के बीच में क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किसी अपने का साथ, किसी अपने का अंदाज, ताकि दोनों ही मिलकर कह सके कि मौसम आशिकाना है।

बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे हों और दिल नाजुक। और बहुत सी उलझनों का जवाब यही है कि मैं अपनी जगह सही हूं, वो अपनी जगह सही है। तो दोस्तों, क्या है ये जिंदगी? जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी कहानी है, और हम दोनों की कहानी इसी का नाम है जिंदगी।

सुकून मौसीकी के मार्फत हमने आपके दिलों में दस्तक देने की एक कोशिश की है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने ख्यालात, अपने विचार हमारे को हमारी ईमेल आईडी radiodasta@gmail.com के ऊपर जरूर भेजें, ताकि हम अगले प्रोग्राम आपकी मर्जी के मुताबिक पेश कर सकें। रेडियो विदस्ता की आज की खास पेशकश सुकून मौसीकी में मैं रहा आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा, आपका हम सफर।

दीजिए अपने इस दोस्त को इजाजत, फिर मिलता हूं किसी और प्रोग्राम के बीच में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

मशहूर सिने और नाटक अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे पुत्र शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर सन 1931 को मुंबई में हुआ था। 8 साल की उम्र से ही वो पापा के साथ नाटकों में काम करने लगे थे। शम्मी 5

भी बंद कर दिया। पृथ्वीराज चाहती थी कि शम्मी की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। मैट्रिक की परीक्षा के बाद पापा ने पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है।

तो शमी का जवाब था कि अब आगे पढ़ने के बजाय बड़े भैया राज कपूर की तरह वो भी फिल्मों में उतरेंगे। इस पर पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम हमें हीरो बनकर दिखाओ। तुम्हारे इस काम में ना मैं मदद करूंगा और ना राज कपूर। तुम्हें अपने बूते पर फिल्मों में काम पाकर

शम्मी ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ फिल्मों में काम तलाशना शुरू कर दिया। वो हर दिन फिल्म निर्माताओं के घर चक्कर लगाने लगे। मगर कोई शम्मी को अपनी फिल्म में काम देने को राजी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम की तलाश जारी।

0: एक रोज वो निर्माता निर्देशक महेश को
1: जय श्री कृष्णा, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भारत सोपुरी एक बार फिर फेसबुक पेज जो रेडियो विदस्ता है उस पर मैं आप सभी के लिए आया हूं, लाइव हूं इस समय और जानकारी देने आया हूं, क्योंकि आज हमारा जो लाइव शो फ्राइडे को होता है, शुक्रवार को होता है, भगवत गीता जीवन का आधार का एपिसोड 3 आज हम ला रहे हैं अभी कुछ समय के बाद, यानी 11:30 बजे से। हमारा मकसद है कि आप सभी को गीता जी के उपदेश के साथ जोड़ना, और उम्मीद करते हैं कि आज का शो भी आप बहुत पसंद करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम अपने हिंदू धर्म में सबसे बड़े ग्रंथ गीता जी के बारे में जानें। हमारे इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ भी जुड़े होते हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, आप उन्हें सुनेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी अपना जीवन पूरा समर्पित किया है समाज के लिए, ताकि वो सही दिशा निर्देश दे सके। मुझे उम्मीद है कि आप इस लाइव शो को हमारे फेसबुक पेज radiovitasta.com से भी

0: सुन सकते हैं। हमारा पेज का जो एड्रेस है वो है facebook.com/radiovitasta। ये जानकारी आपको हमारे इस पेज पर भी और इस शो की स्ट्रीमिंग जो आपको हमारे फेसबुक पेज पर दिख रही है उस पर भी आपको सारी जानकारी मिलेगी। साथ में ये साथ के साथ हमारे सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर भी लाइव होगा, यानी हमारे रेडियो के जो श्रोता हैं वो भी इस कार्यक्रम को, इस लाइव शो को सुन पाएंगे। और जो कहीं सफर में है, कहीं गाड़ी में ड्राइव करते हैं, तो वो आवाज के माध्यम से इस शो के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और शो में जो बातचीत होगी उसके बारे में हम बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो हमें सोशल मीडिया पर पूरे विश्व में कहीं पर भी देख सकते हैं वो हमें अपने ओर से कोई अंग के पास कोई प्रश्न होगा तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर नीचे जो टिकर है उसमें स्क्रॉल हो रहा है उसमें लिखा है, मैं भी आपको एक बार नंबर बता देता हूं। और हमारे रेडियो के श्रोता भी कॉल कर सकते हैं जो आज के विशेषज्ञ होंगे हमारे इस शो में। शो का नाम है भगवद गीता जीवन का आधार। इसका आज एपिसोड 3 यानी अंक 3 हम लाइव करेंगे 11:30 बजे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारे साथ जुड़ेंगे इस शो में और जानेंगे कि ये गीता का जो उपदेश है हमारे जीवन को कैसे सार्थक कर सकता है, कैसे हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। वैसे भी कहा जाता है कि हिंदू धर्म में गीता पढ़ना और पढ़ाना और लोगों तक पहुंचाना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो रेडियो वितस्ता की यह कोशिश है कि हम सभी अपने श्रोताओं को, अपने सोशल मीडिया के लोगों को जोड़ें। और आप सभी इस समय भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। नीचे डिटेल्स जो है स्क्रॉल हो रही है उसमें भी हमारा नंबर है। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा के बारे में भी आप पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। हम सीधा आपको अपने आज के विशेषज्ञ के साथ जोड़ेंगे। हमारे साथ होंगे जम्मू से भास्कर दास जो संयोजक है गीता परिवार जम्मू एंड कश्मीर के, और साथ में होंगे हमारे साथ पुणे से जुड़ेंगे विकास शंकर वैद्या जो हेड है इंटरनेशनल एक्सपेंशन इन गीता परिवार। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो हमारा प्रयास है वो सार्थक रहेगा, आप लोगों तक हम अपनी दिल की बात पहुंचा सकेंगे और अपने मेहमानों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे 11:30 बजे। अभी लगभग आधा घंटा बचा है, तब तक आप अपना जो जरूरी काम है उसको कीजिए और 11:30 बजे के बाद आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। तो एक बार फिर मैं आपको कहूंगा कि आज शुक्रवार को 11:30 बजे दिन में आपके साथ हम जुड़ेंगे। हमारे साथ एक कॉल आ रहा है, देखते हैं कॉल को जोड़ते हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं आप?
1: रेडियो बिकस्ता
0: जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप?
1: आज जो आपका शो चला रहे हैं गीता का जी, गीता जीवन का आधार जी, तो उसमें आपके मेन गेस्ट कौन होंगे बता सकते हैं प्लीज?
0: जी जी, बहुत सही प्रश्न आपने किया है। हम आज के शो में पुणे से जुड़ेंगे, हमारे साथ विकास शंकर वैद्या जो हेड है इंटरनेशनल एक्सपेंशन इन गीता परिवार। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही कॉल करें हमें और सीधा आप हमारे जो मेहमान 11:30 के बाद जुड़ेंगे आप उनसे प्रश्न करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के, धन्यवाद। जी हाँ, ये कॉल जैसे अभी आया था तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके 11:30 बजे के बाद एक घंटे का ये लगभग शो होगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके मन के सवाल जो हमारे पास है वो हम आज के मेहमान से पूछेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो इन सवालों के जवाब देंगे और आपके सवालों के जवाब भी पूरे हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे इस शो में 11:30 बजे। शो का नाम है भगवद गीता जीवन का आधार एपिसोड 3। तो इंतजार करिए और हम भी इंतजार कर रहे हैं आपको अपने साथ जोड़ने के लिए। अभी तक के लिए सारी जानकारी मैंने आपको दे दी आज के शो के बारे में और उम्मीद करते हैं कि आज का शो भी बहुत ही खास रहेगा और आपका प्यार और स्नेह मिलेगा। मिलता हूं आपसे पूरे 11:30 बजे, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।
2: रोमांटिक रोल आज भी फिल्मों में जीवंत लगते हैं। सन 1966 में बनी फिल्म तीसरी मंजिल उनकी कामयाब फिल्म रही। उनके अपोजिट थे आशा पारेख।

0: असर। मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकू सुकू,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू।
2: रफी की आवाज उन पर सटीक बैठती थी, अदाकारी की उनकी बिंदास शैली हमेशा के लिए मशहूर हो गई। जैसे याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे वाले उनके स्टाइल को भला कौन नहीं जानता। रफी के गीतों ने शम्मी को सितार बनाया तो शंकर जयकिशन के संगीत ने उनमें चाशनी पिरोई।
0: हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कहता रहे।

गीता बाली का 1966 में निधन होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी 1969 में नीला देवी से की। आज शम्मी कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बिंदास अदाकारी हमारे दिलो दिमाग पर अभी भी जीवन

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिल तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुभ

0: सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।
1: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
2: तो कौन मांगता?
1: ए जूली जूली,

0: हमको लेली नहीं मानता, हमको मैरी नहीं मानता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मानता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: ये तो कौन मांगता?
1: जानी जानी चले का दिल तुम पे आया जानी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान है जान है जान है।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। मैं भारत सोपोरी, FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता के फेसबुक पेज पर, और आप सभी से रूबरू हूं आज का शो लेके। शो का नाम है भगवद गीता जीवन का आधार। इसका एपिसोड 3 यानी अंक 3 हम आज आप सभी के लिए लाए हैं, और इस शो का मकसद है कि हम आपके दिल तक पहुंचे और आपके जो मन में प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की एक श्रृंखला हमने शुरू की है, और आज इसका ये तीसरा भाग है। हमारे देश में गीता परिवार बहुत ही सुंदर कार्य कर रहा है और लोगों को अपने धर्म के साथ, अपने धर्म ग्रंथ गीता जी के साथ जोड़ते हैं। विभिन्न समय समय पर वो बहुत सारे क्लासेस ऑनलाइन चलाते हैं, और ये कारवां शुरू हुआ जब कोविड शुरू हुआ था। इसके बारे में मुझे भी अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है, और मेरी कोशिश है कि हम आप मिलके सभी रेडियो वितस्ता सामुदायिक रेडियो के जो श्रोता है उनके माध्यम से, और जो हमारे सोशल मीडिया पर हमारे साथ श्रोता जुड़ते हैं उनके साथ भी हम एक मंच पर चर्चा करें कि हमारे लिए हमारे जीवन में कौन से ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन को बहुत ही अच्छा, बहुत ही सही दिशा में लेके जा सकता है। और हम जब छोटे थे तो ऐसा कहा जाता था, गीता पढ़ना, गीता पढ़ाना सबके लिए बहुत ही धर्म का काम है। मैं एक कश्मीरी पंडित हूं, और 36 वर्ष पहले हमने विस्थापन किया था अपनी जन्मभूमि कश्मीर से, और उसका विषय एक ही था कि हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने देश के तिरंगे के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, सब कुछ छोड़ दी, और विश्व के विभिन्न जगहों पर हम स्थापित हो गए हैं। तो मैं यहां इस समय प्रसारित इस कार्यक्रम को कर रहा हूं सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, जो अंबाला छावनी से प्रसारण करता है, और पिछले 36 वर्षों से मैं यहां पर अपना जीवन जी रहा हूं, और कोशिश करता हूं कि जो हमारे आसपास लोग हैं उनको हम किसी न किसी रूप में सही दिशा दिखा सकें। आप सभी जानते हैं कि वह थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी, जो अंबाला की एक थिएटर सोसाइटी, पिछले एक दशक से ज्यादा से काम कर रही है, जो इस सामुदायिक रेडियो को चलाती है। तो मकसद हमारा समुदाय को सही दिशा के साथ जोड़ना, और कोशिश करते हैं कि अलग अलग कार्यक्रमों के साथ जोड़ के आपके जिंदगी के हम सफर बन पाए। यही कोशिश जारी है। और इस शो का जब जन्म हुआ, जब हमारा विचार आया कि हमें गीता जी पर बात करनी चाहिए, विशेषज्ञों ने जिन्होंने अपने जीवन को लगाया है इस काम के साथ, तो उनको हम इस मंच पे बुलाएं, उनसे बात करें, जानें कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या लक्ष्य रखा है, किस तरीके से वो समाज को आगे अपने साथ बढ़ा रहे हैं, एक सही दिशा में लेके जा रहे हैं। हमारे पास मंच है, पर जो विशेषज्ञ है उनके पास हमारे हर सवाल का जवाब है। तो शुरू करते हैं आज का ये लाइव शो जो आप सुनेंगे हमारे सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर, और साथ में लाइव है हमारे रेडियो वितस्ता के फेसबुक पेज से। आप सभी श्रोताओं को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह पहुंचे, विश्व भर में इस शो को देखा जाए। तो ये तो थी बात आज के इस शो के बारे में। शो का नाम है भगवद गीता जीवन का आधार, और आज इसका अंक 3 है जो हम आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ इसमें एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं पुणे महाराष्ट्र से। उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, और उनका नाम है विकास शंकर वैद्य। पुणे महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ेंगे इस शो में। हेड है इंटरनेशनल एक्सपेंशन इन गीता परिवार, यानी गीता परिवार को पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस तरीके से उसको एक्सपेंड करना है, कैसे हमें सभी लोगों तक पहुंचाना है, अलग अलग भाषाओं में गीता जी का जो उपदेश है वो सभी तक, विश्व तक पहुंचाना, विश्व कल्याण के लिए पहुंचाना है। ये मैकेनिकल इंजीनियर है और व्यवसायी भी है। कई राष्ट्रीय भाषाएं और अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं ये बोलते हैं, खास करके इंडोनेशियन, मलेशियन, स्पेनिश, और हमारे देश की भाषाएं तो बोलते ही हैं। सभी 18 अध्याय गीता जी के ये रिसाइट करते हैं कई साल से, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनसे हमारे जिज्ञासाओं का, हमारे सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। एक और बात इनमें जो खास है वो ये है, विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ते हैं पुणे गीता परिवार, और बहुत सारी जानकारी इनके बारे में ये जानेंगे हम उनके बारे में भी। तो आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे जो मेहमान है, श्री विकास शंकर वैद्य जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के हमारे इस शो में, और जिसका नाम है भगवद गीता जीवन का आधार, और आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन जी। जय श्री कृष्ण। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारी जिज्ञासाएं हमारी श्रोताओं के पास होंगी जिनको हम आप तक रूबरू करेंगे। और साथ ही हम स्वागत करते हैं भास्कर दास जी का, जो संयोजक है गीता परिवार जम्मू और कश्मीर के। भास्कर जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन इस शो में।
1: जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुजी स्वामी गिरिजी जी महाराज के सूक्ष्म अपस्थि को मैं प्रणाम करता हूँ, और साथ में जो 90 एफएम के जो श्रोता है उनको भी प्रणाम कर लेता हूँ, और अपने विकास वैद्य भैया का मैं स्वागत करता हूँ गीता परिवार जम्मू कश्मीर। जय श्री कृष्ण भैया
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। विकास वैद्य जी, आप आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं, और आपसे हमें बहुत सारी जानकारी हासिल भी करनी होगी और लेंगे भी, और उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी श्रोता हैं उनके लिए हमने कॉल का प्रबंध भी रखा है। हमारे श्रोता कॉल कर सकते हैं 7056413010 पर, अगर विकास जी से वो कोई प्रश्न करना चाहते हैं और वो जरूर हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। विकास जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप अपने बारे में, जो मैंने बताया, जो मुझे जानकारी है आपके बारे में, आप अपने बारे में बताएं कि विकास शंकर वैद्य जी कौन है, क्या उनका व्यक्तित्व है।
1: परिवार में हम लोग, हमारे जो पर्सनल व्यक्तित्व होता है उसके बारे में चर्चा करते नहीं है, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो उसके बारे में बताता हूँ। मेरा जन्म इंदौर में हुआ था
0: जी,
1: वहां से मैं फिर पुणे में आया था टाटा मोटर्स में, उस टाइम टाटा मोटर्स में उसको टेलको कहते थे, तो वहाँ पे आया था, वहाँ पे कुछ साल जॉब किया, फिर NRI था कुछ 12-15 साल तक, इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर में स्थित था, वहां से फिर इंडिया आने के बाद में मैंने खुद की एक कंपनी चालू की थी, ग्लोबल फिलिपिन डेटा इन्फो सिस्टम
0: जी,
1: अभी भी कार्यरत है, और करीब 10 साल पहले गीता से जुड़ा
0: जी,
1: और उसके बाद गीता से जुड़ना ऐसा हो गया कि अब गीता छुटती नहीं है, मैं छोड़ता नहीं हूँ गीता को, गीता मुझे छोड़ती नहीं है। और मेरा 24 घंटे ये कार्यक्रम होता है, गीता के बारे में किताब पढ़ना, किताब पढ़ाना, और गीता के बारे में विवेचन करना। जहाँ भी जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, इंग्लैंड जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, गीता के बारे में कार्यक्रम अरेंज करना और गीता पढ़ाना, किताब का पारायण कर कार्यक्रम में जिंदगी में आ जाए। इसके अलावा मेरी कोई पहचान नहीं है, गीता ही मेरी पहचान है, गीता सीखना सिखाना, मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ, सीख रहा हूँ अभी, गीता पूरी आगे ऐसा कोई कह नहीं सकता
0: जी, जैसे मैंने कहा कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है, एक मैकेनिकल इंजीनियर, और गीता जी का जो प्रवाह है, तो कैसा इन दोनों में समन्वय है?
1: समझ में बहुत गहरा है दोनों का, और जो आपका ये प्रश्न है, मतलब ये आज की पीढ़ी का भी प्रश्न होता है कि भगवद गीता तो 5,500 साल पहले कही गई थी
0: जी,
1: उसका आज के आधुनिक और तकनीकी युग में क्या उसका क्या संबंध है, जो 5,500 साल पहले बताया कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, उसका आज की परिस्थिति से क्या लेना देना है? तो आज के लिए भगवद गीता का समझना, उसके उपदेशों को समझना जरूरी है क्या
0: जी?
1: सवाल होता है
0: जी,
1: हमारा करियर है, हमारा व्यक्तिगत जीवन है, वो बदलेगा क्या गीता पढ़ने से? तो उसके बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा, आप अनुमति दे तो।
0: जी जी प्लीज।
1: तो आजकल जो जैसे हमको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता,
0: जी
1: इंटरनेट, सोशल मीडिया,
0: जी
1: तीव्र प्रतिस्पर्धा का युग है आजकल।
0: जी
1: आज का युवा पहले की तुलना में अधिक शिक्षित है, हम लोगों से ज्यादा शिक्षित है आज का युवा, तकनीक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम है, लेकिन साथ में ही तनाव, चिंता, तुलना, असफलता का भय, करियर की अनिश्चितता, इनसिक्योरिटी और मानसिक अशांति, इसी समस्याओं से निरंतर जूझते रहता है। ऐसे समय में भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, लेकिन एक जीवन प्रबंधन कैसा करना, लाइफ मैनेजमेंट कैसा करना, उसका एक सर्वोत्तम मार्गदर्शक बन के सामने आती है।
0: जी
1: तो आज के लोगों को या मेरे भी युग के लोगों को गीता क्या क्या सिखाती है, गीता आज भी कैसे वैलिड है, आज भी गीता का संदेश हम कैसे जान सकते हैं, हमारे जीवन बदल सकते हैं जैसे अर्जुन का बदला। सबसे पहले गीता हमको, सब युवाओं को, सब मनुष्यों को कर्तव्य निष्ठा सिखाती है।
0: जी
1: भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, दूसरे अध्याय। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं, जिस प्रकार हम ज्यादा चर्चा करेंगे आगे जाके।
0: जी
1: तो आज अनेक विद्यार्थी और युवा लोग परिणामों की चिंता में इतना उलझ जाते हैं कि उनका वर्तमान प्रदर्शन प्रभावित हो जाता है।
0: जी
1: यदि वे सिद्धांतों को अपनाएं तो वे परीक्षा हो, प्रतियोगिता हो, नौकरी हो, धंधा हो, उसमें अधिक एकाग्रता और आत्मविश्वास से कार्य कर सकते हैं। दूसरा गीता जो हमें पढ़ा सिखाती है वो है मानसिक संतुलन, या मूल्य संदेश मानसिक संतुलन का। सफलता मिलने पर अहंकार न हो और असफलता मिलने पर
0: निराशा ना हो। जी
1: समझते, गीता का मूल संदेश है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योगोचते, जो समता का पालन करता है वो योगी है। तो आज के कार्पोरेट जग में भी भावनात्मक संतुलन मतलब इमोशनल बैलेंस सबसे बड़ी आवश्यकता है। जो व्यक्ति परिस्थिति में हमेशा संतुलित रहता है वही सही निर्णय ले सकता है और दीर्घकाल में वही सफल हो सकता है। तीसरी चीज गीता सिखाती है हमको, आत्मविश्वास और आत्मविकास।
0: विकास
1: गीता में उद्धरेदात, हाँ
0: जी जी जी विकास जी, आप जी जी प्लीज आप कह, प्लीज आप जारी रखिए जी।
1: हाँ, तो गीता का श्लोक है, स्वयं का विकास कैसे करना, उद्धरेदात।

0: जी
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म्स साइट जो है गई, इसके कारण मन की एकाग्रता कम होती जा रही है। गीता
0: जी
1: मन को नियंत्रित करने का उपाय बताती है। गीता में श्लोक है, अभ्यास से तो कौन थे वैराग्य जो गृह थे, निरंतर अभ्यास और अनावश्यक आकर्षणों से दूरी बनाना। वैराग्य मतलब हिमालय में जाके किसी गुफा में छिपना, वो वैराग्य नहीं। संसार में रहते हुए अनावश्यक आकर्षणों से दूरी बनाना, ये वैराग्य। ये दो चीज हमने अपनाई, अभ्यास और इस प्रकार का वैराग्य, तो हमारे मन को हम स्थिर कर सकते हैं। ये सिद्धांत किसी भी विद्यार्थी के लिए, किसी भी शोधकर्ता के लिए, किसी भी इंजीनियर के लिए, किसी भी डॉक्टर के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए सफलता का आधार है। अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य मतलब अनावश्यक आकर्षण से दूरी बनाना। पांचवी चीज गीता अर्जुन को सिखाती है, लीडरशिप, नेतृत्व। गीता में श्लोक है, यद्दाचरति श्रेष्ठ तत्रैवेतरो जनः। जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है समाज उसी का अनुसरण करता रहता है। यदि एक अच्छा नेता केवल आदेश देता है तो समझ में नहीं आता, लेकिन आदेश के अलावा वो आचरण से आचरण अपना सिखाता है उस तरीके का, तो उससे प्रेरणा ज्यादा मिलती है। ये सिद्धांत है, ये आचरण का सिद्धांत। या आज के मैनेजर्स हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, टीचर्स हो, बिजनेसमैन हो, उनके लिए अत्यंत उपयोगी है कि हमारा आचरण वैसा चाहिए। छठी चीज गीता सिखाती है, नैतिकता और ईमानदारी, उसका महत्व। केवल धन कमाना हमारी सफलता नहीं है, सही मार्ग से सफलता प्राप्त करना ये अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संदेश है, धर्म सम्मत आचरण से प्राप्त सफलता ही हमें स्थायी समाधान देती है, स्थायी शांति देती है, स्थायी समाधान देती है। तो
0: जी
1: व्यक्तिगत जीवन में भी गीता का प्रभाव अत्यंत गहरा है।
0: विकास जी, आपने बहुत ही
1: जी
0: विकास जी आपने बहुत ही सही दिशा में इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे पास भी बहुत सारे प्रश्न हैं, और जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ये मान के चलें कि वो हमारे श्रोताओं के प्रश्न हो सकते हैं, हमारे देशवासियों के प्रश्न हो सकते हैं, और क्योंकि ये शो इंटरनेशनली देखा जाता है, बहुत सारे हमारे विश्व के जो प्राणी हैं उनके भी ये प्रश्न हो सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज आप हमारे इस शो के मेहमान है, ज्यादा से ज्यादा आप बोलेंगे, हम सिर्फ आपसे प्रश्न करेंगे छोटा सा, और कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों का उत्तर हमसे हम आपसे खोजने की कोशिश करेंगे। हमारे श्रोता भी जुड़ने लगे हैं इस शो में। तो भास्कर जी, मैं अगला प्रश्न विकास जी से करूं, आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके लिए जम्मू कश्मीर में गीता परिवार का संयोजक होना कितना महत्वपूर्ण है, कितना समय आपने लगाया इस गीता परिवार में, और किस तरीके से आप आगे चुनौतियां भी देख रहे हैं, और कितने लोग आपको सही दिशा में लेते हैं, और हो सकता कुछ लोग सही दिशा में ना भी लेते हों, तो इसका मैं प्रश्न का उत्तर आपसे जानना चाहूंगा। अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए अपने को। जी
2: भारत जी,
0: जी
2: आपका एक प्रश्न है, उसमें प्रयास करूंगा उत्तर का। 2009 में जब कोविड हो गया, जब से ये learngita.com प्रारंभ हो गया था, उस समय मेरी पोस्टिंग दिल्ली में थी, तो रक्षा मंत्रालय में से काम करने के, तो हम तो बाहर ही रहे, अपने जो समाज है उतना उसमें सम्मिलित नहीं रहे। तो लास्ट मेरा पोस्टिंग जम्मू में रहा रिटायरमेंट से पहले, तो थोड़ा सा अपने जो समाज है उसके साथ मिलने जुलने का हमको अवसर मिला। तो गीता परिवार के साथ जुड़ ही लिए थे, पहले सेवा दे रहे थे, तो अरे पहले पहले तो बहुत पहले तो किसी को मैं जानता नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर गीता परिवार के जो साधक हैं उनसे बात हुई, जो इस परिवार की सेवा देने के लिए इच्छुक हैं उनसे आहिस्ता आहिस्ता बात हुई, तो लगभग 2 साल के आसपास समय इसमें लग गया। और उसके बाद जो गीता परिवार की जो एक्टिविटीज है जो देश भर में चलती है, उसको समझने का भी हमको समय मिला, वो लगा उसमें 1-2 साल लगे। तब मेरे मन में एक ऐसा जिज्ञासा हुई कि क्यों नहीं, एक ऐसा कार्य है जिसको अगर हम करें तो जीवन सफल हो जाएगा, जो जीवन में हमको बहुत पहले करना चाहिए था नहीं कर पाए क्योंकि हमारी स्थिति कुछ ऐसी रही। तो तब से लेके जम्मू कश्मीर से हम सेवा दे रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में आपको जानकारी तो है ही है, कठिनाइयां तो बहुत सारी हैं, पर हम उसको माइंड में नहीं रखते। हम जब कार्य कर लेते हैं तो हम भगवान का श्री कृष्ण जी का नाम लेके हम निकल जाते हैं। तो आज के समय में तो स्थिति बहुत अच्छी है, और अब हम आगे जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू के बाहर भी जो डिस्ट्रिक्ट है उन तक पहुंचने का भी हमारा प्रयास जारी है। पर सफर तो कठिन है, जैसे आपको ज्ञात है, ये एरिया जो

0: पे जो स्थिति रही है उतनी सार्थक नहीं रही है, तो हम प्रयास कर रहे हैं इसको काफी आगे बढ़ाने का और हमारे प्रयास जारी है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विकास जी आपसे पहला प्रश्न करना चाहूंगा। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह होगा कि आज के आधुनिक और तकनीकी युग में हमारे देश के नव युवकों के लिए भगवद गीता का अध्ययन करना और उसके उपदेशों को समझना कितना जरूरी है, यह उनके करियर और व्यक्तिगत जीवन को कैसे बदल सकता है?
0: कि जैसे हमने शुरू में बात की कि आज का युवा एक ऐसे दौर से जी रहा है कि जहाँ तकनीक ने हमारे जीवन को सुविधाजनक तो बना दिया है लेकिन
1: जी
0: मन को पहले से ज्यादा अशांत कर दिया है। ये तो सही बात
1: जी
0: है, विशेषकर जो आईटी है, स्टार्टअप है, बीपीओ है, मेडिकल है, फाइनेंस है, कॉर्पोरेट क्षेत्र है, उनमें कार्यरत लोग रात देर तक काम करते रहते हैं,
1: जी
0: दिन में सोते हैं, समय पर भोजन नहीं कर पाते हैं, लगातार लक्ष्य टारगेट, लगातार डेडलाइन, समय सीमा, लगातार प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, इसके दबाव में रहते हैं।
1: जी
0: कोई यूएस शिफ्ट में काम करता है, कोई यूके शिफ्ट में काम करता है, कोई इंडियन शिफ्ट में काम करता है, लेकिन सबका टाइम टेबल बिगड़ा हुआ है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? तनाव, स्ट्रेस, चिंता, एंग्जाइटी, अनिद्रा, इंसोम्निया, अकेलापन, लोनलीनेस और बर्नआउट, थक जाते हैं बेचारे, कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इससे समस्या बढ़ती जा रही है आजकल। ऐसी परिस्थिति में भगवत गीता केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और जीवन का प्रबंधन कैसा करें इसका एक अत्यंत व्यवहारिक मार्गदर्शक सिद्ध होता है।
1: जी
0: जैसा
1: जी
0: पहला हमने श्लोक कहा, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, योगस्थ कुरु कर्माणि संगत, दूसरा श्लोक है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समभूत्वा समत्वयोगो उच्यते। मतलब सफलता और असफलता, प्रशंसा और आलोचना, लाभ और हानि, इन सब में संतुलित रहकर कर्म करना ही योग है। कार्पोरेट जीवन में हर परियोजना सफल नहीं होती थी,
1: जी
0: हर पदोन्नति मिलती नहीं है, हर प्रयास तुरंत फल देता भी नहीं है। यदि युवा हर उतार चढ़ाव को अपनी पहचान बना ले कि प्रमोशन मिला तो मैं ठीक हूँ, नहीं मिला तो मैं बेकार हूँ, तो फिर तनाव बढ़ेगा। गीता सिखाती है परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर तो हमारा संतुलन डगमगाना नहीं चाहिए। तो ये मन के प्रशिक्षण के बारे में गीता सिखाती है। गीता कहती है अभ्यास में कौन थे वैराग्य जरूरी है, नियमित अभ्यास करिए। संतुलित जीवन शैली के ऊपर भी गीता में श्लोक है, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्ना बोध से योगो भवति दुखा। मतलब जिसका आहार विहार कर्म सोना जागना संतुलित है, संतुलित युक्त आहार विहार से जो है ना, ये जीवन का मार्गदर्शन करता है। ऐसे आदमी का जीवन दुखों से मुक्त होने लगता है। विष्णु का आश्चर्य कार्पोरेट युग के लिए बहुत प्रासंगिक है, जिससे
1: आपने,
0: कि प्रत्येक कारण
1: माफ कीजिएगा विकास जी, आपने संतुलन की बात की। संतुलन की अगर हम बात करते हैं, आपकी बात को मैं रोक रहा हूं बीच में। आपने संतुलन की बात की। संतुलन की अगर हम जीवन में बात करें, हमारे लिए बहुत सारे इस समय समस्याएं हैं, अवसाद है या मेंटल जो हेल्थ है उसके बारे में भी हम आगे प्रश्न आपसे जरूर करेंगे। संतुलन की बात आपने की तो मैं इसके साथ ही ये जुड़ता हुआ एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा। गीता जी कहती है कि फल की इच्छा ना करें तो फिर काम करने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? तो मैं चाहूंगा कि जो आप बात कर रहे थे
0: बिल्कुल
1: इसको भी इसी के साथ जोड़ दीजिए और हमारे इस प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा आपसे।
0: सही बात, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा।
1: जी
0: देखिए
1: धन्यवाद।
0: गीता के बारे में लोगों के मन में यही शंका होती है कि गीता बोलती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत करो।
1: जी
0: वास्तव में बहुत से लोग इसका अर्थ क्या निकालते हैं कि फल की इच्छा छोड़ दो,
1: जी
0: इसका मतलब लक्ष्य छोड़ दो,
1: जी
0: महत्वाकांक्षा मत करो, महत्वाकांक्षा समाप्त कर दो, ऐसा समझ लेते हैं,
1: जी
0: जो बिल्कुल गलत है। गीता ऐसा बिल्कुल नहीं कहती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस श्लोक का अर्थ ये नहीं है कि फल नहीं मिलेगा या फल की योजनाएं बनाओ मत। इसका अर्थ है अपने कर्म का उद्देश्य उत्कृष्टता से हो,
1: जी
0: केवल फल की चिंता करना नहीं।
1: जी
0: तो गीता लक्ष्य का मतलब गोल का विरोध नहीं करती है, बल्कि फल के प्रति अति आसक्ति जो होती है हमारे मन में, अटैचमेंट, उसका विरोध करती है। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी का लक्ष्य प्रथम आना हो सकता है,
1: जी
0: वो पूरी मेहनत करे, अच्छी योजनाएं बनाए, समय का सदुपयोग करे, ये सब आवश्यक है। लेकिन यदि परीक्षा के पहले वो सिर्फ परिणाम की चिंता करता रहे, मतलब अगर मैं पहला नहीं आया तो क्या होगा, मैं मेरिट में नहीं आया तो क्या होगा, मैं क्लास में पहला नहीं आया तो क्या होगा, तो ये चिंता उसकी एकाग्रता और उसका प्रदर्शन कमजोर कर देती है। एक आपको उदाहरण बता रहा हूँ मैं,
1: जी,
0: कर्म का और कर्म फल में जो जिनका ध्यान भटक जाता है वो कैसे भटक जाते हैं। एक प्रसिद्ध हृदय शल्यक मतलब हार्ट सर्जन थे, उनकी बात कर रहा हूँ मैं आपको सही बात में। तो उन्होंने अपने जीवन में हजारों हृदय के ऑपरेशन किए थे, हार्ट स्पेशलिस्ट, हार्ट सर्जन थे, अभी भी है वो। अपनी कुशलता और एकाग्रता के कारण उन्होंने हजारों रोगियों को जीवन बचाया था।
1: जी,
0: इसका कारण ये था कि ऑपरेशन करते समय उनका पूरा ध्यान केवल अपने कार्य पे होता था। एक दिन परिस्थिति ऐसी बनी कि उनका अपना बेटा हृदय के ऑपरेशन के लिए उपस्थित हो गया,
1: जी,
0: कुछ हार्ट में प्रॉब्लम हो गया। उन्होंने जब सोचा कि मैं उसका ऑपरेशन करूंगा तो उनके मन में विचार आया, यदि ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो मेरा इकलौता बेटा मैं खो दूंगा। ये सोचते ही वो घबरा गए
1: जी,
0: उनके उसका परिणाम उनके मन में चिंता में उलझ गया। ये होता है जब हमारा, अभी उन्होंने हजार ऑपरेशन किए थे तब उनके मन में ये विचार नहीं आया था,
1: जी,
0: तब तो पूरा एकाग्रता से कर्म कर रहे थे, लेकिन जब अपने पुत्र का ऑपरेशन करने का सवाल आया तो कर्म फल के ऊपर उनका ध्यान ज्यादा गया, कर्म की ज्यादा, कर्म से बजाय।
1: तब वो
0: हमारा ध्यान कर्म से हटकर परिणाम के ऊपर अधिक केंद्रित हो जाता है तो परिणाम का ये जो भय है वो विचलित कर देता है, हमारी एकाग्रता कम देता है और हमारी क्षमता पर भी प्रभाव डालता है। गीता का संदेश है, अपना पूरा ध्यान कर्म पे लगाइए, परिणाम पे मत लगाइए। जब कर्म श्रेष्ठ होगा तो परिणाम भी श्रेष्ठ ही होगा ईश्वर की कृपा से।
1: जी,
0: जब प्रेरणा हमारा कर्तव्य, उत्कृष्टता और सेवा होती है तब हर व्यक्ति जो है परिस्थिति में आगे बढ़ता ही रहता है।
1: आपने सही उदाहरण दिया विकास जी, जैसे आपने कहा कि वो डॉक्टर जब अपने बच्चे का ऑपरेशन कर रहा था तब वो शायद डॉक्टर ना रह के एक पिता होके अपने बच्चे का ऑपरेशन कर रहा था, तो वहां पे कर्मों की बात आई। जी जी जी जी तो मैं भास्कर जी से पूछना चाहूंगा कि भास्कर जी आप ये बताए कि जो कर्म की बात है ये हम अपने धर्म में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
2: वैद्य भैया ने तो एकदम सही हमको एग्जाम्पल दे दिया आज, और वास्तव में ऐसा ही है। हम जितना भी प्रयास कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो भी कार्य कर लेते हैं अपने जीवन में बच्चों के लिए या परिवार के लिए या समाज के लिए, हमेशा हमारे मन में तो ये रहता ही है कि हम बिना उद्देश्य के तो कोई काम करते थोड़ी है
1: जी।
2: मतलब हम यही, जैसे उन्होंने बोला कि पहले हम परिणाम ही सोचे, परिणाम मिले या नहीं, क्योंकि जैसे शुभया बोलते हैं हम खेत तो किसान के हाथ में खेत लगाना है, वहां से फसल कैसे निकलेगी वो तो उसके वश में नहीं है, उसका काम सिर्फ कर्म करना, खेत लगा लेना। तो ये जीवन के हर पहलू के लिए लागू है, हम अपने हिसाब से काम तो कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, हमारे मन में निकली कोई एक्सपेक्टेशन तो है ही है।
1: जी,
2: जैसे विकास भैया ने बोला कि नहीं मिले तो हम विचलित हो जाते हैं, वैसा नहीं होना है कि हमने अपने कर्म करना है, बाकी उसका जो फल क्या मिलता है, कैसा मिलता है, कितना अच्छा मिलता है, कितना बुरा मिलता है, वो ईश्वर पे छोड़ देना है। और ये वास्तव में सही है, हम जो भी कार्य करने के लिए निकल जाते हैं तो वो वैसा ही 100% वैसे होता है, ये सब सोचते हैं ऐसा तो संभव होता नहीं, और ये सब इस बात को सब लोग एक्सेप्ट भी कर सकते हैं।
1: पर जब गीता जी का उपदेश हमारे सामने होता है, पर आखिर हम इंसान है, जब हमारे साथ कुछ भी ज्यादती होती है हम भगवान को दोष देते हैं कि हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है, हमने तो सब अच्छा किया। तो गीता जी इन जिज्ञासाओं का जो उत्तर हमें देती है, विकास जी से पूछना चाहूंगा किस तरीके से हम गीता जी से इस समस्या का समाधान ढूंढे कि हमारे जीवन में अगर समस्याएं आती हैं तो समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि मैंने तो अच्छा किया था, मेरे साथ क्यों बुरा किया, तो इसका हम जो आधार है वो कैसे ढूंढें?
0: सही बात है, हमको लगता है कई बार कि हमने तो सब बराबर किया लेकिन हमको गलत परिणाम क्यों मिला। 100 बच्चे परीक्षा में बैठे हैं, हमने बहुत पढ़ाई की है, जो साधारण व्यक्ति था वो पास हो गया, हमको नंबर नहीं आए अच्छे, या जॉब का सिलेक्शन का इंटरव्यू है हमारा फर्स्ट क्लास आया है लेकिन जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी दूसरे का हो गया, ऐसा क्यों होता है? ये कर्मफल का सिद्धांत, और कर्मफल का सिद्धांत एक जिंदगी का नहीं होता है, वो हमारे जो पूर्वी पूर्व आयुष्य जो हमने जिए हैं,
1: जी
0: जन्म है
1: जी,
0: उससे ये कच्चा चिट्ठा पकते रहता है हमारे कर्मों के और कर्मों के फलों का। तो हमारे पास तो हमारे सिर्फ इस जिंदगी का हिसाब किताब है, हमने ये परमात्मा के पास हमारे सारी पूरी पहले वाली जिंदगियों का भी हिसाब किताब है
1: जी।
0: बहुनि में विदितानि जन्मानि तव चार्जुन, ताने में सर्वाणि नत्वं वित्तपरं तपः, कृष्ण भगवान को अपने पुराने सारे जन्म पता है, हमको हमारे पुराना जन्म एक भी पता नहीं है
1: जी।
0: इसीलिए हमको पुराने हमने क्या कुल खिलाए हैं पहले के जन्मों में, ये हमको पता नहीं है। कर्मों का फल कब देना ये प्रकृति डिसाइड करती है, भगवान डिसाइड करते हैं
1: जी।
0: कुछ सब अच्छा किया कि
1: जी जी विकास जी, इसके साथ ही जुड़ा हुआ जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, क्योंकि हम कहते हैं कि युवा ही हमारी देश की जो है बेस है और उस देश को सुदृढ़ बनाती है, पर समय बदल चुका है आज के दौर में। आजकल की युवा पीढ़ी कॉरपोरेट कल्चर में रात रात भर काम करती है और दिन में वो सोती है, जिससे उनका लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल चुका है। इस भागदौड़ में और मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन या स्ट्रेस के दौर में गीता जी के उपदेश उनके मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, के लिए कितना सार्थक और व्यवहारिक साबित हो सकता है। मैं चाहूंगा कि विकास वैद्य जी आप इसका विस्तार से जवाब दें, क्योंकि जितने भी श्रोता हमारे इस समय युवा श्रोता सुन रहे हैं उन तक भी ये बात पहुंचे, और साथ में हमारे रेडियो के माध्यम से जितने युवा और जो बुजुर्ग है वो भी सुन रहे हैं उन तक ये बात पहुंचे, ताकि अपने अपने परिवारों में अपने युवाओं को वो मार्गदर्शन कर सकें। जी
0: जी, तो हमने चर्चा के दौरान 30 श्लोक पढ़े थे,
1: धन्यवादी
0: कारस्ते मा परेशु दाचन, और दूसरा पढ़ा था योगस्थ कर कर्माणि संगं दत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समभूत्वा समत्पय्योग उच्यते
1: जी।
0: तो ये जो श्लोक है, कर्म का अधिकार हमारा है, कर्म फल का नहीं, और जो समता का है योग समत्पय्योग उच्यते, कि दोनों श्लोक जो है ना ये आज की पीढ़ी को मार्गदर्शन करने वाले थे। जैसे मैंने कहा कि आज का युवा ऐसे दौर से जी रहा है कि जहाँ तकनीक ने जीवन को सुविधाजनक बनाया है लेकिन उसमें टेंशन भी डाल दिया है। तो भगवत गीता केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, लेकिन हमारा मानसिक संतुलन कैसे हो, जीवन का लाइफ मैनेजमेंट कैसे हो, इसका मार्गदर्शन करता है। तो ये जो है योगस्थ कुर कर्माणी या अभ्यास है तो कौन थे वैराग्य जो भूलिए थे, इसका आज के कॉर्पोरेट जन में बहुत गहरा संबंध है
1: जी।
0: कि हम ज्यादा चिंता करने लगे कर्म की या कर्म के फल की, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ
1: जी,
0: और एक उदाहरण देता हूँ जो लाइव एग्जाम्पल है दोस्त लोग देने का। आपने अभिनव बिंद्रा का नाम सुना है
1: जी,
0: जो आज हमारे बीजिंग ओलंपिक में जो उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, पहला गोल्ड मेडल
1: जी।
0: तो अभी ये जो उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, उनको जब पूछा गया कि आपने गोल्ड मेडल के लिए क्या तैयारी की थी
1: जी,
0: वो इस उलझन में रहते हैं कि मैं तो गोल्ड मेडल कमाऊंगा ही कमाऊंगा। तो प्रबल दावेदारों में से है थे, मतलब पूरे देश की उम्मीदें उन पर टिकी हुई थी, सारे अखबार सारे टेलीविजन सारे खेल विशेषज्ञ एक ही प्रश्न पूछ रहे थे, क्या अभिनव बिंद्रा भारत को पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल दिलाएंगे ओलंपिक में। यदि अपेक्षाओं को और परिणाम के दबाव के बारे सोचते रहते, टीवी खोला तो अभिनव बिंद्रा, पेपर खोला तो अभिनव बिंद्रा, तो टेंशन कितना हुआ उस आदमी के ऊपर, स्तंभता को उनका मन विचलित हो जाता। निशानेबाजी ऐसा खेल है
1: जिसमें
0: जरा सी भी मानसिक अस्थिरता हो या तनाव हो तो निशाना चूकने
1: निशाना चूकना ही चूकना जी।
0: हाँ, तो बाद में अभिनव बिंद्रा ने बताया जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता कि जब वे निशाना साधते थे तब उनका ध्यान पदक पर नहीं था, गोल्ड नहीं दिख रहा था उनके सामने, बल्कि केवल अपनी प्रक्रिया पर होता था, सही सांस लेना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, ट्रिगर को सही समय दबाना और उस एक क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना
1: जी।
0: हम क्या करते हैं, या तो हम पास्ट में जीते हैं फ्यूचर में जीते हैं। तो अभिनव बिंद्रा ने कहा कि मैं प्रेजेंट में जी रहा था, उस क्षण में जी रहा था, पदक उनके नियंत्रण में नहीं था, लेकिन प्रत्येक शॉट को सर्वोत्तम ढंग से खेलना उनके हाथ में था, जो उन्होंने किया। उन्होंने एक एक शॉट पूरा धैर्य पूरी शांति पूरी एकाग्रता से लगाया,
1: एकाग्रता से
0: यही मानसिक संतुलन उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन तक ले गया, और अंततः उन्होंने भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास दिया। तो ये जीवन का संदेश है, राष्ट्रीय युवा के लिए भी है, कि मन का मानसिक संतुलन बनाए रखे, हर बार ये सोचना कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मुझे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं प्रथम आऊंगा या नहीं आऊंगा, या इससे हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। सफलता की चिंता और असफलता का भय, ये दोनों मन को अस्थिर कर देते हैं, और जब हमारा ध्यान पूरी तरह कर्म पर होता है तब हमारा प्रदर्शन स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ हो जाता है, जैसा अभिनव बिंद्रा का हो गया। तो अभिनव बिंद्रा के हाथ में स्वर्ण पदक नहीं था, उनके हाथ में केवल अगला शॉट था
1: जी,
0: उन्होंने उसी पर अपना पूरा ध्यान लगाया, गोल्ड मेडल भूल गए थे उसके उस क्षण के लिए, और ये कर्म योग है, गीता का कर्म यही बताता है। तो युवाओं का संदेश आज का ये है कि आपकी परीक्षा आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी का इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या कोई खेल प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, या मंच पे भाषण दे रहे हैं, आपका ध्यान परिणाम के ऊपर नहीं चाहिए कि लोग ताली बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे, बल्कि अपना श्रेष्ठ प्रयास हो इस पर केंद्रित हो। इसलिए गीता का संदेश ये है, वर्तमान क्षण को शत प्रतिशत अपना सहयोग दीजिए, वर्तमान क्षण में जीजिए, शत प्रतिशत उसको दीजिए, वर्तमान क्षण को, पास को नहीं फ्यूचर को भी नहीं।
1: जी,
0: जी
1: विकास जी, आपने एकाग्रता की बात की। वैसे भी अगर हम जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसमें एकाग्रता का बहुत बड़ा योगदान रहता है। साथ ही हम अगर कभी हमारी एकाग्रता अगर भंग होती है और हमारा उसका जो नुकसान है वो हमें उससे उठाना पड़ता है। पर कई बार ऐसे हालत हो जाते हैं कि जैसे हमें शत्रु की जो जानकारी है वो नहीं हो पाती है, या हमारे बीच में जो अवसाद आया उसकी जानकारी हमें नहीं हो पाता है। मैं इसी से जुड़ा एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा। उम्मीद है कि हमारे श्रोता उन हमारे इन प्रश्नों से जुड़ेंगे। मेरा प्रश्न होगा, गीता के अनुसार हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है?
0: आप पूछे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो अधिकांश लोग कहेंगे कि वो बाहर मेरा पड़ोसी ना, मेरा शत्रु है, वो जो दूर हो जाए ना, वो मेरा शत्रु है, उससे मेरे बहुत नुकसान पहुंचा है। भगवत गीता का उत्तर इससे बिल्कुल अलग है। भगवत गीता कहती है हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही छुपा हुआ है।
1: जी,
0: जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि मनुष्य अपनी इच्छा न होने पर भी पाप कर्म की ओर क्यों चला जाता है, अर्जुन ने सवाल पूछा था कि उसकी इच्छा नहीं है पाप कर्म करने की।
1: जी,
0: लेकिन जैसे कोई हाथ पकड़ के उसे पाप कर्म करवा दिया, अच्छे अच्छे लोग पाप कर्म क्यों प्रवृत्त क्यों हो जाते हैं? भगवान ने उत्तर दिया था, काम ईश क्रोध रजोगुण समत्वा महाशनो महापापमा विधेन नियम अनियंत्रित इच्छा कामना और उसको होने वाला क्रोध, ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। काम मतलब केवल इंद्रिय सुख काम नहीं, लेकिन काम का अर्थ है अनियंत्रित इच्छाएं, अतृप्त लालसाएं और स्वार्थपूर्ण आकांक्षाएं, ये है काम। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो क्रोध में परिवर्तित हो जाती है, उससे क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है, फिर मनुष्य ऐसे निर्णय लेता है जिसके बारे में बाद में पछतावा होता है। दूसरे अध्याय में श्लोक है, बड़े सुंदर श्लोक है, ध्याय तो विषय संगस्ते शुभते संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते, उसको जुट के क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात प्रतिविभ्रमः प्रतिभ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मतलब विषयों का बार बार चिंतन, सोफे पर बैठे हैं कुछ कर नहीं रहे लेकिन विषयों का चिंतन चल रहा है, स्पर्श रूप और सुगंध ये जो इंद्रियों के विषय है उनका चिंतन कि ऐसा हुआ तो क्या मजा आएगा यार, वैसा हुआ तो क्या मजा आएगा यार, तो ये आसक्ति पैदा करता है। बार बार चिंतन किसी का विषय का हो जाए तो वो आसक्ति का निर्माण करता है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध, आसक्ति पूरी नहीं हुई कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश। जैसे अर्जुन का स्मृति का नाश हो गया था, अब तो समझ में नहीं आया कि कर्तव्य कर्म क्या है,
1: युद्ध
0: करना कर्तव्य कर्म है, युद्ध से पीछे हटना कर्तव्य कर्म है, वैसे हमारा भी स्मृति का नाश हो जाता है और अंततः बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का विनाश हो जाता है, ये मनुष्य का पतन का क्रम है। गीता केवल मनुष्य का पहचान ही कर दिया हमारे कि काम और क्रोध हमारे हमारे मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है, उसका समाधान भी बताती है।
1: जी
0: जी,
1: विस्तार से विकास वैद्य जी आपने जो हमें इन प्रश्नों का उत्तर दिया है, और मैं भास्कर जी से पूछना चाहूंगा कि भास्कर जी आप ये बताएं कि विकास वैद्य जी का जो कथन है वो हमारे जीवन को किस तरीके से संभाल लेता है, किस तरीके से हमारा जब उपदेश हमारी जो मेहनत लोगों के पास जाती है, तो जब आप जम्मू कश्मीर के गीता परिवार के संयोजक होने के नाते आप कहीं जाएंगे तो आज जो विकास जी ने अभी तक बताया उसमें आप किस तरीके से, किस एनर्जी से आप लोगों तक जाएंगे और किस तरीके से आपको प्रेरणा मिल रही है विकास जी के प्रश्नों के उत्तर से?
2: सहमत हूँ से। मैं आपको हम जब प्रचार जब कर लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट रहता है जो हम ऑफलाइन प्रचार कर लेते हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं, वहां पे गीता जी का हम पारायण करते हैं। पारायण करने का अर्थ ये है गीता के जो अध्याय हैं हम वो पढ़ लेते हैं, उनको उनको सुना लेते हैं। तो अक्सर हमको लोग ये प्रश्न पूछते हैं, हमें अर्थ बताइए,
1: जी
2: तो अर्थ जानना तो एक अलग चीज है, पर गीता जैसे बार बार कहा जाता है कि गीता जो है, गीता जी जो है ये एक लाइफ मैनुअल है, आपको जीना कैसे है। अब ये तो ऐसी कोई दवाई है ही नहीं कि आपने कोई समस्या बताई तो कोई दवाई आपको मिल गई तो उसका इलाज तुरंत होगा।
1: जी
2: गीता जी हमको अपना जीवन बिताना कैसे, कैसे जीना है और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हमको कैसे बिहेव करना है वो सब सिखा देती है। तो वो जब हम अपने आप में जीवन में जब वो चीजें हम ले आते हैं तब जाके हमको गीता जी का असली ज्ञान और इसका असली पॉटर इसका जो असली प्रभाव है वो तभी दिखता है। इसलिए गीता परिवार का जो स्वामी जी का जो एक वाक्य है, गीता पढ़े पढ़ाए फिर जीवन में लाए, क्योंकि जीवन में लाने के उपरांत ही आप ये निर्णय कर सकते हैं कि जो ज्ञान गीता से मेरे को मिला तो जब मैंने उसको जीवन में अपनाया तो सचमुच जिस तरह से गीता जी में ऐसा बताया गया है कि अगर आप ऐसे करें तो ऐसा आपको लाभ होगा, तो जब वो एक्सपीरियंस आपको हो जाती है तो आप स्वयं ही ये निर्णय कर लेते हैं कि सचमुच गीता जी का जो ये कथन है बिल्कुल सही है। और ये चीज भी पिछले आपको जानकारी तो है ही है, हमारा जीवन कैसे कश्मीर से निकलने के बाद जीता है, लेकिन पिछले 5-6 साल से जब से मैं गीता परिवार से जुड़ा हूँ और गीता की हम सवेरे शाम बात करते रहते हैं, अलग अलग विवेचन जैसे विकास वैद्या भैया ऐसे बहुत सारे हमारे गीता परिवार जुड़े जो विवेचन देते हैं गीता के श्लोक के बारे में, हमारे जिंदगी में उनका क्या प्रभाव है उसके बारे में हम बता देते हैं। तो सचमुच जब हम उनके ऊपर कार्य कर लेते हैं जीवन में लाने के समय ही उससे ही आपको समझ आ जाएगा कि गीता का जो ज्ञान है वो कितना सार्थक है। काले एक कान से सुनने तो दूसरे कान से आप छोड़ देंगे तो आपको ये समझ आएगा गीता सब कुछ ठीक ठाक है, ये संभव नहीं है। आपको सचमुच में गीता में जो ज्ञान दिया हुआ है उसको आपके जीवन में लाना है। जब जीवन में लाएंगे तभी आप निर्णय कर सकते हैं कि इसका लाभ है या नहीं है। दूसरा कोई सुनाएगा लाभ है नहीं, उससे तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब अपने जीवन में आप स्वयं ही ये अनुभव करते हैं सचमुच मुझे जब मैंने गीता के अनुसार ये कार्य किया तो मुझे तो बहुत लाभ हुआ, जो तो ये सब चीजें ऐसी हैं जब गीता जी को हम जीवन में लाते हैं, अपने जीते हैं गीता जी के साथ, तब जाके हम जिंदगी आपको ऑटोमेटिकली ये रियलाइज होता है कि सचमुच हमको गीता जी से बहुत पहले से जुड़ना चाहिए था, पर जब भी जुड़े हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसे स्वामी जी का जो ये जो मतलब हम इस आवास में पूछे लाइफ ऑफ ऑलमोस्ट 6 ईयर्स जो नई पीढ़ी है, स्वामी जी का सिर्फ प्रयत्न ये है कि गीता जी जो है वो हमारे नई जनरेशन तक पहुंचे ताकि उनका जो जीवन है उनके जीवन में जो समस्या, जैसे कि आप बार बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं आज जो पीढ़ी है उसमें तरह तरह के स्ट्रेस हैं, तो उनसे अगर गीता का ज्ञान अगर उनको समय से मिले जब वो गीता के अनुसार अपने कार्य कर लेंगे तो डेफिनेटली उनके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव आएगा और वो सफल होंगे।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कहा कि गीता पढ़े पढ़ाएं और अपने जीवन में लाएं। मैं 19 जून से मैंने learngeeta.com से रजिस्ट्रेशन करके मैं एक छात्र हूं वहां पे, और मुझे पता है कि गीता पढ़ना पढ़ाना और जीवन में लाना कितना आसान है और कितना आने वाले दिनों में अगर हम प्रयत्न करेंगे तो आसान रहेगा, पर अगर हम केवल सोचेंगे फिर तो मुश्किल है। मैं अभी प्रोनाउंसिएशन अभी सीख रहा हूं, पर कई बार मुझे ये भी परेशानी होती है, डर होता है कि अगर मेरा नाम लिया जाए और अगर मैं सही उच्चारित नहीं कर पाया तो क्या होगा। और बोलने के लिए तो मैं 24 घंटे बोल सकता हूं, पर जब हम एक छात्र बनते हैं तो हमें उस लेवल से सीखना पड़ता है, उसी लेवल पे आना पड़ता है। विकास वैदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें बहुत ही सरल तरीके से हमारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं और मैं भी सीख रहा हूं। जो ये प्रश्न है ये हमारे सभी श्रोताओं की ओर से, मेरी ओर से है और पूरे देशवासियों की ओर से है। इसी के साथ मैं जुड़ा एक प्रश्न आपसे करूंगा जो आपके जीवन के साथ जुड़ा है। आप गीता परिवार के अंतर्राष्ट्रीय परिवार को देख रहे हैं, क्या गीता के उपदेश सिर्फ भारतवर्ष की सीमाओं तक सीमित है या आज के वैश्विक संदर्भ यानी ग्लोबल कंटेक्स्ट में पूरी दुनिया के लिए इसका कोई विशेष महत्व है? जी विकास जी।
0: देखिए गीता ये जो है ये तो पूरे विश्व के लिए, आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन यदि 800 करोड़ समझी जाए तो 800 करोड़ में से हर एक व्यक्ति के लिए गीता है
1: जी।
0: गीता के लिए कोई किसी देश की सीमाएं गीता का प्रचार प्रसार रोक नहीं सकते
1: जी।
0: तो गीता ये तो सबके लिए है, सिर्फ एक भारत के लिए है ऐसा नहीं है, विशेष जाति धर्मों या किसी विशेष परिस्थितियों में गीता है, गीता कालातीत है, सबके लिए है और सब इस गीता का जो अध्ययन है उसका लाभ उठाकर अपना जीवन समृद्ध कर सकते हैं। तो ये जो चीज है आपने जो पूछा कि गीता सिर्फ भारत के लिए है,
1: जी हाँ,
0: ये गलत धारणा, भारत के लिए नहीं है, ये किसी एक विशेष जाति विशेष के लिए भी नहीं है, ये पूरे मानव जाति के,
1: मानव जाति के, जी
0: हाँ, पूरे मानव जाति के लिए है। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि गीता जो है, ये भगवान कहते हैं गीता में ये यथा प्रपद्यन्ते स्तास्तं एव जाम्यहम् हम, ये गीता का संदेश सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल मैसेज है,
1: जी।
0: किसी एक जाति धर्म भाषा इसके लिए सीमित नहीं है, जो जिस प्रकार से मुझे प्राप्त करना चाहता है मैं उस प्रकार से उसको स्वीकार करता हूँ। ये तमाम प्रपद्यन्ते स्तास्तं एव जाम्यहम्
1: जी,
0: इसलिए किसी एक पंथ का आग्रह नहीं करता है, बल्कि ये बताता है कि ईश्वर सभी के लिए समान है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति और श्रद्धा के अनुसार इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। गीता, ये गीता की विश्व व्यापकता है। गीता कहते गीता भगवान कहते गीता में विद्यावेद संपन्न ब्राह्मणी पंडित समदर्शना, ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा कथित दिन न समझने वाले लोग सब में एक ही आत्मा का दर्शन करता है। आज जब पूरी दुनिया समानता, इक्वेलिटी, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स और सम्मान, डिग्निटी इसकी बात करती है, तो गीता ने ये प्रिंसिपल तो 5,500 साल पहले ही बता दिया
1: जी।
0: आज विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में, प्रबंध संस्थानों में, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में गीता के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, वो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के इसके लिए नहीं किया जाता है
1: जी,
0: वो सभी देशों में किया जाता है, पिछले देशों में भी किया जाता है
1: जी जी।
0: इसका कारण यह है कि गीता किसी धर्म का प्रचार करती नहीं है, बल्कि वो एक नैतिक नेतृत्व, इथिकल लीडरशिप क्या होती है, निर्णय क्षमता कैसे डेवलप करना है, डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, भावनात्मक संतुलन कैसे बनाए रखना है, इमोशनल बैलेंस
1: जी,
0: और स्ट्रेस मैनेजमेंट, और आखिर में उद्देश्यपूर्ण जीवन, पर्पसफुल लिविंग कैसा करना है, इसकी शिक्षा देती है, जिसका किसी धर्म से लेना देना ही नहीं, किसी धर्म की प्रचार प्रसार करते ही नहीं
1: जी।
0: हम तो सिर्फ भगवान का संदेश बताते हैं सभी जाति सभी धर्मों के लिए जो एप्लीकेबल है। तो गीता का संदेश आधुनिक है, गीता मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन की बात करती है।
1: विकास जी, एक सोशल मीडिया पर एक कमेंट हमारे पास आया है जो आपकी स्क्रीन पर है। पूर्णिमा धोलेरे पाठक ये लिख रहे हैं, द स्कूल कैरिकुलम शुड इंक्लूड एटलीस्ट वन पीरियड ऑन भगवद गीता। ये आज के डेट में कितना प्रासंगिक है और कितनी हमें आज के डेट में बच्चों के लिए ये जरूरी है।
0: मैं दीदी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ
1: जी,
0: उन्होंने ये विचार प्रकट किया
1: जी,
0: ये बहुत अच्छा विचार है और गीता परिवार इसके बारे में प्रयत्नशील है
1: जी।
0: मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा में ये कार्यान्वित हो चुका है
1: जी,
0: में बच्चों गीता पढ़ रहे हैं, बाकी प्रदेशों में भी हमारा प्रयत्न जारी है। तो हम तो स्कूलों तक सीमित नहीं है, हम तो जेल के कैदियों को भी गीता पढ़ाते हैं
1: जी,
0: हर हफ्ते जेल के कैदियों के हमारे गीता के सत्र चलते हैं, विभिन्न सत्र चलते हैं, और कैदियों के लिए गीता कैसी पढ़नी चाहिए, कैदियों के लिए गीता का क्या संबंध है उनकी लाइफ से, वो तो बंदीवास में कारागृह में बंद है, और हमारे गीता क्या सब, लेकिन किसका गहरा संबंध है वो हम बताने की कोशिश करते हैं कि गीता पढ़ने से आपका जीवन भी सुधर सकता है
1: जी।
0: तो ये सारे सब लोगों को इसमें सम्मिलित करने का हमारा प्रयास है
1: जी।
0: दीदी ने कहा स्कूल के बच्चों को पढ़ाना चाहिए ही, क्योंकि बचपन से संस्कार जो बनते हैं, बचपन के संस्कार तो जिंदगी भर काम आते हैं, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी काम आते हैं।
1: जैसे हम
0: संस्कार बनाना
1: जी, जैसे विकास जी कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है एक वो कोरा कागज होता है जो हम उस पर लिखेंगे, वही पूरी जिंदगी में उसका जो अध्ययन है वही उसकी बेस और वही उसकी जिंदगी बनेगी। हमारे इस कार्यक्रम में समय जो है वो निकला जा रहा है और विकास जी से बहुत सारी बातें अभी करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि आज भास्कर जी से ज्यादा प्रश्न ना करूं, मैं आपसे ही रूबरू हूं। एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, वो ये है कि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं और उत्सुक भी है कि आप गीता परिवार के साथ किस तरह से जुड़े हैं और वर्तमान में आप इस संस्था में क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं ताकि उन्हें भी प्रेरणा का एक स्रोत मिले।
0: सबसे पहले मैं तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे जैसी महान सेवा परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला है
1: जी।
0: में
1: जी,
0: मेरे संस्था जुड़ना भी पूरे निर्णय नहीं था, ये तो भगवान की देन है
1: जी।
0: ग्रेस ऑफ गॉड जिसको कहते हैं उनकी देन है,
1: जी
0: भगवान की कृपा और गुरुजनों का आशीर्वाद, उसका परिणाम है कि मैं गीता परिवार से जुड़ा हूँ और जितनी सेवा मुझे बन सकती है वो देने की कोशिश करता हूँ।
1: जी
0: शुरुआत तो हर एक विद्यार्थी के रूप में होती है गीता पढ़ाने के लिए।
1: जी
0: भगवत गीता को समझने और उसको जीवन में उतारने की जिज्ञासा मुझे गीता परिवार की तरफ ले आई। जैसे जैसे अध्ययन आगे बढ़ा मुझे अनुभव हुआ कि गीता केवल पढ़ने का विषय नहीं है
1: जी
0: बल्कि जीने का मार्ग है।
1: जी
0: और यह अनुभव धीरे धीरे सेवा में प्रेरणा स्रोत बनते गया। गीता परिवार की विशेषता यह है कि आप केवल गीता का ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि गीता का ज्ञान समाज तक पहुंचाने का भी बल दिया, उसके ऊपर भी बल दिया जाता है। ये भावना मुझे विभिन्न सेवाओं की, इस भावना से विभिन्न सेवाओं का मुझे अवसर प्रदान हुआ। वर्तमान में मैं मुख्य रूप से भगवद गीता का अध्ययन, अध्यापन और विवेचन में जुड़ा हूँ।
1: जी
0: इंग्लिश में विवेचन जितने हर सप्ताह में मैं विद्यार्थियों को गीता सिखाने के लिए प्रेरित करना, विदेश में जब भ्रमण करता हूँ तो वहां पे गीता पारायण करना, वहां के लोगों को इंटरव्यू देना गीता के बारे में, उनके जो सवाल है उनको जवाब देने की, उनकी जो शंकाएं है उसको जवाब देने की कोशिश करना, मार्गदर्शन देना, जो जितना भी लिमिटेड ज्ञान है श्लोकों का सरल और व्यवहारिक अर्थ समझाना, गीता के परिपेक्ष में एक मॉडर्न डे की कहानी सुनाना, ये मेरा काम होता है। गीता के संदेश को आधुनिक जीवन से जोड़कर प्रस्तुत करना ये मेरी मुख्य सेवाओं में शामिल है।
1: जी
0: तो मैं स्टोरी ऐसी बताता हूँ जो आज के जीवन में रहती है।
1: जी
0: महाभारत काल की स्टोरी बताई तो लोग बोलेंगे अरे हमारा क्या संबंध है महाभारत की स्टोरी से, आज के जीवन में क्या है गीता का संबंध वो बताइए ना।
1: जी
0: तो आज के जीवन में गीता के श्लोक का क्या संबंध है वो बताने की कोशिश करता हूँ।
1: जी
0: इसके लिए उसके अतिरिक्त प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन, जो गीता में गीता पढ़ाते हैं गीता परिवार, उनका मार्गदर्शन, अध्ययन की सामग्री तैयार करना, गीता प्रचार के विभिन्न कार्यक्रम और समाज के विभिन्न वर्गों विशेषता युवाओं परिवारों जिज्ञासुओं तक कैदियों तक बच्चों तक गीता का संदेश पहुंचाना ये कार्य भी करने में मुझे प्राप्त हुआ है। मैं कोई पद या दायित्व नहीं बल्कि गीता मतलब एक साधना और सेवा के रूप में करता हूँ। मैं स्वयं को गीता का आज भी विद्यार्थी मानता हूँ, मैं कोई गीता ज्ञानी नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ आज भी। जितना अधिक पढ़ता हूँ उतना अनुभव होता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, जितना हम ज्यादा पढ़ते हैं उतना ज्यादा अनुभव होता है कि हमको कुछ पता नहीं है गीता के बारे में।
1: जी
0: सीखने की यात्रा दिन चलती रहती है।
1: आप विकास वेदी जी जैसे आप जैसे लोग गीता परिवार में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं और केवल गीता तक ही सीमित नहीं है, अक्सर गीता के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का जिक्र भी आता है। सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं कि विष्णु सहस्त्र नाम क्या है और इसके पाठ का क्या आध्यात्मिक व मानसिक लाभ है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मैं अभी गीता का भी एक विद्यार्थी हूं और मुझे लग रहा है कि जो विष्णु सहस्त्र नाम है इसके बारे में आपसे बेस्ट कोई भी नहीं बता सकते हैं।
0: धन्यवाद। देखिए विष्णु सहस्त्र नाम जैसे नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम
1: जी
0: नाम से स्पष्ट है कि भगवान विष्णु के 1000 दिव्य नामों का संकलन है।
1: जी
0: ये केवल स्तुति प्रेज नहीं भगवान के 1000 गुणों का, उनकी शक्तियों का, उनके स्वरूपों का और उनके आदर्शों का संक्षिप्त दर्शन कराता है। इसका वर्णन हुआ महाभारत के अनुशासन पर्व में। महाभारत के युद्ध जब समाप्त हुआ उसके बाद भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे, वो तो 10वें दिन ही शरशैया पर चले गए थे क्योंकि अर्जुन के बाणों से घायल हो गए थे, छिन्न भिन्न हो गए थे, लेकिन वो उत्तरायण की राह देख रहे थे। उत्तरायण में जो योगी प्राण त्याग करते हैं उनको मोक्ष प्राप्त होता है। योगी थे वो उसकी याद देख रहे थे कि उत्तरायण कब शुरू हो, वो 58 दिन तक 58 तक वो शरशैया पर पड़े थे। युधिष्ठिर जब महाराज युधिष्ठिर उनके पास गए, उन्होंने पूछा कुछ सवाल पूछे जो विष्णु सहस्त्र नाम में आते हैं कि संसार में सर्वोच्च देव कौन है, मनुष्य किसकी उपासना करे, इसका नाम जपने से मनुष्य का कल्याण होता है और कौन सा उपाय मनुष्य को सभी दुखों से मुक्त कर सकता है। तो उसके जवाब में पितामह भीष्म ने भगवान विष्णु के 1000 नामों का उपदेश किया। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम केवल एक स्तोत्र नहीं बल्कि पितामह भीष्म का अंतिम आध्यात्मिक संदेश मानना चाहिए। जो अपनी जिंदगी का आखिरी पल गिन रहे थे उनका आध्यात्मिक संदेश है विष्णु सहस्त्र नाम। मतलब जब गीता और विष्णु सहस्त्र नाम के संबंध को देखें तो गीता हमें जीवन की सही दृष्टि दिखाती है, जबकि विष्णु सहस्त्र नाम उस दृष्टि को भक्ति स्मरण और ध्यान के माध्यम से हृदय में स्थापित करने का साधन बनाता है। सरल शब्द में कहूं तो गीता हमें बताती है कि कैसे जीना है
1: जी।
0: और विष्णु सहस्त्र नाम हमें उस आदर्श जीवन के लिए आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। यदि मैं आपको और दूसरी भाषा में कहूं तो भगवद गीता एक डॉक्टर द्वारा दिया गया संपूर्ण स्वास्थ्य मार्गदर्शन है कि आपको स्वास्थ्य चाहिए ना, अच्छा ये मार्गदर्शन है आपके लिए।
1: जी
0: विष्णु सहस्त्र नाम प्रतिदिन ली जाने वाली औषधि के समान है।
1: जी आपने विकास जी जी जी आपने विकास जी भीष्म पितामह जी की बात की और हमें बहुत खुशी है कि हम कुरुक्षेत्र भूमि से सिर्फ 30 या 40 किलोमीटर दूर है। जब भी हम कुरुक्षेत्र जाते हैं तो हम भीष्म कुंड जहां पर भीष्म पितामह को अर्जुन ने पानी पिलाने की जो कोशिश की थी और जहां पर वो शैया पर बहुत समय पर रहे हैं हम उस जगह पर गए हैं, नमन करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कुरुक्षेत्र के पास होके भी अगर हम गीता जी के उपदेश को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इससे बड़ा काम कोई भी नहीं हो सकता है। शायद प्रभु ने हमें विस्थापन के लिए तैयार किया और शायद इन काम के लिए हमें तैयार किया और इससे सुंदर काम हमारे जीवन में कोई भी नहीं हो सकता है। जब हम प्रोफेशनल लाइफ में थे तो शायद समय नहीं था इन काम के लिए, जब हम प्रोफेशनल लाइफ से सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो फिर कोशिश होती है कि समाज को कुछ दिशा और निर्देश दिए जाएं। मैं आपसे, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि जो दर्शक आज आपको सुन रहे हैं और गीता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं वे learngeeta.com के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें क्या सीखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं श्रोताओं को जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने भी learngeeta.com को ज्वाइन किया और मैं भी एक छात्र हूं वहां पे। कई बार मुझे भी थोड़ी सी मतलब घबराहट होती है जब हम उसको सीखते हैं, बट जब हम प्रयत्न करेंगे तो जरूर हम उसमें कामयाब होते हैं। तो विकास वैदी जी, मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा, फिर भास्कर जी की ओर जाऊंगा। जी
0: धन्यवाद। देखिए सबसे पहले मैं सभी दर्शकों से आग्रह से ये कहना चाहूंगा कि भगवद गीता पढ़ने के लिए किसी विशेष आयु, किसी विशेष योग्यता, संस्कृत का ज्ञान या पृष्ठभूमि आवश्यक नहीं है।
1: जी
0: यदि की जिज्ञासा हो और श्रद्धा हो तो कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बन सकता है। यदि आप गीता को व्यवस्थित, सरल और जीवनोपयोगी ढंग से जीवन में उपयोग लगाने के ढंग से सीखना चाहते हैं तो आप learngeeta.com इसके ऊपर क्लिक करिए, उससे जुड़ जाइए, उसके ऊपर रजिस्टर करिए। इस मंच की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ गीता को केवल पढ़ाया नहीं जाता बल्कि जीवन में उतारने की प्रेरणा दी जाती है। आपको अध्ययन के अनेक प्रकार के अवसर मिलते हैं, जैसे भगवद गीता के 18 से 18 अध्याय का क्रमबद्ध अध्ययन 11, 12, 13, 14 में प्रत्येक श्लोक का सरल अर्थ और व्यावहारिक जीवन में उसका उपयोग, संस्कृत श्लोकों का शुद्ध आचरण, हमने PDF तैयार किए हैं जो संस्कृत को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देते हैं
1: जी।
0: ये कंठस्थ करने का प्रशिक्षण देते हैं कि गीता कंठस्थ कैसे करें
1: जी।
0: लोगों की इच्छा होती है गीता कंठस्थ हो, सबको होती नहीं है लेकिन जिनको होती है उनको होती है
1: जी।
0: हमारे यहाँ 85 साल के वृद्ध भी गीता कंठस्थ करते हैं, 6 साल का बच्चा भी करता है और विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषा में अध्ययन की सुविधा देते हैं। जैपनीज में हमने डॉक्यूमेंट बनाए, बाकी तो इंडियन भाषा में सभी में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली सभी भाषा है
1: जी।
0: ऑनलाइन कक्षाएं हैं, 1000 से ज्यादा कक्षाएं चलती है दुरुज
1: जी।
0: अभ्यास, परीक्षा और अध्ययन सामग्री हम देते हैं सब
1: जी।
0: सब मुफ्त है, निःशुल्क है सब
1: जी।
0: एक पैसा लगता नहीं गीता पर्यंत
1: जी।
0: बच्चे हो, युवा हो, गृहस्थ हो, वरिष्ठ नागरिक हो, सबके लिए उसका उपयुक्त पाठ्यक्रम हम तैयार करते हैं
1: जी।
0: और गीता के माध्यम से अपना विकास, अपना नेतृत्व, अपना तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और जीवन मूल्य का प्रशिक्षण ये गीता परिवार देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केवल इंफॉर्मेशन नहीं है बल्कि आत्म परिवर्तन की यात्रा है, ट्रांसफॉर्मेशन पर बल देते हैं हम लोग। उद्देश्य केवल श्लोक याद करना नहीं है बल्कि गीता के संदेश को अपने व्यवहार में, अपने परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र में और अपने समाज जीवन में उतारना, ये उद्देश्य है
1: जी।
0: जो लोग आगे बढ़कर सेवा देना चाहते हैं उनके लिए स्वयं सेवक हम लेते हैं, प्रशिक्षक बनाते हैं उनको, हमारे से गीता सीखते हैं और हमारे गीता के प्रशिक्षक बन जाते हैं
1: जी।
0: गीता प्रचार होने का अवसर देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी आगे चलकर अनेक लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है
1: जी। जी
0: मैं इसलिए दर्शकों से आग्रह करूंगा कि रोज केवल 10-15 मिनट गीता के लिए निकालिए। हमारा 40 मिनट का क्लास होता है, 40 मिनट निकालिए क्लास के लिए
1: जी।
0: प्रतिदिन एक श्लोक का पठन करिए जरूर, अर्थ समझने की कोशिश करिए, उसके ओर मनन चिंतन करिए। कुछ समय में आप अनुभव करेंगे कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन का एक सच्चा मार्गदर्शक है।
1: जी
0: अंत में भगवान कृष्ण के प्रेरणादी संदेश गीता में श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा हो तो ज्ञान की प्राप्ति होती है,
1: जी
0: श्रद्धा रखने वाले ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
1: जी
0: तो गीता में प्रगाढ़ श्रद्धा रखिए और ये अद्भुत ज्ञान प्राप्त करिए। हम सब मिलकर केवल गीता को पढ़े नहीं बल्कि गीता जीना सीखा, गीता के द्वारा जीना कहते हैं, और हमारे जीवन, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश अधिक शांत, अधिक संतुलित और मूल्यनिष्ठ बनाने का प्रयास करें। गीता परिवार इसके लिए आपको मदद करने के लिए तैयार है। हरदम 24 घंटे हमारी क्लासेस चलती है, अनेक भाषाओं में चलती है
1: जी।
0: और प्रचार प्रसार 85 देश में फैल गया अभी।
1: विकास जी, मैं अपनी ओर से एक चीज जानना, मतलब जोड़ना चाहता हूँ एक विद्यार्थी होने के नाते। जब मैंने learngita.com पर रजिस्ट्रेशन की, मैं सभी श्रोताओं को भी ये जानकारी देना चाहता हूँ, वो सुने इस बात को। जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया और मुझे वहां पर जो ऑप्शंस मिले, पहले तो ऑप्शन मिले कि आप किस भाषा में इसको पढ़ना चाहते हैं, आप किस भाषा में कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, और उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपके पास ऑप्शन है कि रात के 2 बजे तक। जी, तो सुबह 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक आपके पास जो भी समय अनुकूल है उस हिसाब से आप 40 मिनट का चयन कर सकते हैं, जैसे मैंने 7 बजे से 7:40 तक चयन किया है। और आप जब वहां पर जुड़ते हैं, जो वहां पर टीचर है, जो पढ़ाते हैं, अगर आप एक शब्द भी सही कहते हैं तो वो बहुत बढ़िया कह के आपको आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, आपको शाबाशी देते हैं। तो अगर हम कोशिश करेंगे, जैसे आपने कहा कि जब हमारे मन में ये श्रद्धा है तो हम उसको जरूर कर पाते हैं, और मेरी भी कोशिश यही है। मैं अभी शुरुआती में छात्र हूं learngita.com पर, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब L1 का एग्जाम होगा, मैं जब उत्तीर्ण होऊंगा, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात वो होगी। और मैं अंत में भास्कर जी से यह जानना चाहूंगा कि आप learngita.com में रजिस्टर करने के बारे में कौन कौन सी भाषाओं में, जैसे अभी जापानीज भाषा भी ऐड हुई है, आप इस विषय में हमारी श्रोताओं को बताएं कि किस तरीके से वो रजिस्टर कर सकें। हमारा मकसद है कि इस कार्यक्रम में जब अगला शो हम करें उसमें वो जरूर हमें बताएं कि उन्होंने इस शो में बताएं कि वो उन्होंने learngita.com पर रजिस्टर किया और उनको वहां पर कैसा लगा। तो आप कृपया जल्दी में बताएं क्योंकि समय हमारा समाप्त हो चुका है। जी भास्कर जी,
2: जी मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगा।
1: जी जी जी जी,
2: एक तो जैसे आपने पूछा कि रजिस्टर कैसे करना है,
1: जी
2: joingita.com तो एक ऐसा पोर्टल जो डायरेक्टली आपको उस फॉर्म पे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे ले जाता है।
1: जी,
2: तो वहां से सिर्फ दो जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं पर नहीं है, 2 मिनट का समय ज्यादा से ज्यादा लग जाता है। अगर आपका नेटवर्क ठीक है तो आपको एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप में ले जाता है जहाँ पे आपको हर दिशा निर्देश मिल जाता है, और आपके मोबाइल पे जूम ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ता है क्योंकि ये जो गीता परिवार की जो एक्टिविटी चलती है जूम ऐप के द्वारा चलती है। अच्छा, इसमें 5 दिन कक्षाएं चलती हैं, हर दिन 40 मिनट का समय रहता है, और शनिवार और जो रविवार है उसमें विवेचन होते हैं। विवेचन का क्या अर्थ है कि जो श्लोक आपने उस सप्ताह में पढ़े उनका अर्थ बताया जाता है, और साथ में जैसे विकास भैया ने बोला कि जो जीवन से संबंधित जो उन श्लोकों का जो वास्ता है उसके बारे में आपको ट्रेल में बताया जाता है। एक लंबा कार्यक्रम रहता है, 2-2.5 घंटे का भी हो जाता है, उसमें कोई समय सीमा नहीं है। और उसमें एक और एडवांटेज ये है कि अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है आप डायरेक्टली जो भी विवेचन करता है उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसी जिज्ञासा है कि जो आप पिता के संबंध में जानना चाहते हैं तो उसका भी उत्तर आपको वहां पे डायरेक्टली मिल जाएगा। इसमें अभी तक कुछ 15 लाख के आसपास साधक जुड़े हैं, 33 टाइम स्लॉट है। जैसे भी आप बता रहे हैं सवेरे 4 बजे से प्रारंभ होकर रात के 2 बजे तक, चूंकि इंटरनेशनल 185 कंट्रीज में अभी कक्षाएं चलती है, तो उसमें उसको ध्यान में रखते हुए 33 टाइम स्लॉट का समय रखा हुआ है सवेरे 4 बजे रात के 2 बजे तक।
1: जी,
2: जिसमें 15 भाषाओं में भी कक्षाएं चलती हैं, देश में 13 है, 2 विदेशी भाषाएं, 1 नेपाली है, और जैसे अभी बताया आपने जापान की है, और 3000 के आसपास कक्षाएं पर डे चलती है। और ये तो learngita.com से ज्वाइन करने का आपने पूछा तो मैंने बताया। इसके अतिरिक्त जो गीता परिवार की जो और एक्टिविटी है वो बाल संस्कार शिविर करने का है। हमारा स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी जी का उद्देश्य, जैसे पहले ही बताया मैंने, कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, बच्चे, स्कूली बच्चे हैं, उन तक हमको ये बात जो संस्कार हमारे धर्म में दिए गए हैं उनके बारे में जो इस समय कमी है वो चीजें हम स्कूलों में जा जाके उनसे परमिशन लेके स्कूलों में हम बाल संस्कार शिविर कर लेते हैं। बाल संस्कार शिविर करने के लिए एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस है हमारे गीता परिवार की ओर से जिनको हम वहाँ पे स्कूल में जाके कर लेते हैं। तो हमारा अनुभव ये रहा है कि पिछले दो साल से हम ये काम चला रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में और हमारा अच्छा वहाँ से जो स्टूडेंट्स है उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। और मतलब ये भी है कि अगर हम साल के बाद भी जाते हैं तो वो जो हमने बातें उनके साथ करी हुई थी वो इमिजिएटली रिकॉल कर लेते हैं। तात्पर्य ये है कि जो कुछ हम गीता परिवार के द्वारा बाल संस्कार शुरू करके जो बालकों को अपने समाज के लिए अपने धर्म के बारे में अपने जो देश है हमारे देश के बारे में हमारा क्या विचार है हमको क्या करना चाहिए ये सब चीजें हम उनमें बता देते हैं तो इसका बड़ा अच्छा लाभ है। तो गीता परिवार इस समय अपने देश में जहां जहां हम प्रांत में है तो ये कार्य हम करते हैं।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस शो में भी और आने वाले जो गीता परिवार के साथ जुड़े हम शो करेंगे उनमें भी हम समय समय पर आपके प्रश्नों के उत्तर भी देने की कोशिश करेंगे और साथ में आपसे हम जुड़ेंगे क्योंकि रेडियो विदस्ता है हम सफर जिंदगी का हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का हम सफर बने। इस कार्यक्रम का समय पहले ही ज्यादा हो चुका है। जी जी जी जी प्लीज
2: जैसे आपके रेडियो का है रेडियो विदस्ता
1: हम सफर जिंदगी का
2: तो कार्यक्रम आप चला रहे हैं गीता जी का वो भी हम सफर जिंदगी का है तो ये बहुत अच्छा सहयोग है दोनों चीजों के बीच में।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिर में मैं विकास वैदी जी आपका शुक्रिया अदा करते हूँ हृदय तल से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे श्रोताओं के लिए आखिरी टिप्पणी आपसे आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने गुरुजन के बारे में क्या सोचते हैं। बिना गुरु के ज्ञान मिलता नहीं ये कहा गया है लिखा गया है तो हमारे श्रोताओं को आप क्या मार्गदर्शन अंतिम शब्दों में कहेंगे और उसके साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे।
0: देखिये आप सबों ने श्लोक सुना है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे
1: नमः।
0: गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त होता नहीं तो गुरु तो जो भाग्यशाली है मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे जीवन में अनेक संत विद्वान और गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। मुझसे सबसे बड़ी सीख उनसे ये मिली है कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य केवल स्वयं को महान बनाना नहीं है
1: जी
0: बल्कि स्वयं को विनम्र बनाना है और समाज के लिए कोई भी बनाना है
1: जी।
0: मेरे गुरुजनों ने हमेशा कहा कि शास्त्र पढ़ना आसान है लेकिन शास्त्र को जीवन में उतारना उतना ही वास्तविक साधना है
1: जी।
0: तो भगवद गीता श्लोक तभी सार्थक होता है गीता पढ़ने का तभी मतलब है तभी सार्थकता है जब हमारे व्यवहार हमारा निर्णय और हमारे चरित्र में वो दिखाई दे कि हाँ ये गीता का विद्यार्थी है। भगवान कहते यदादरित श्रेष्ठ तत्व दरोजना जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति करता है आचरण वैसे बाकी समाज विश्व का अनुसरण करता है। तो हमको समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना है हमारे आचरण से
1: जी।
0: तो एक और शिक्षा मेरी गुरुजनों से सीखी कि अहंकार का अहंकार जो है हमारा ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है
1: जी।
0: हम यदि ये अहंकार पालने लगे कि हाँ मुझे तो गीता आ गई है तो भगवान को अहंकार प्रसन्न नहीं है। जितना हम आदि सीखते हैं उतना अनुभव होता है कि जानने के लिए बहुत बाकी है हमारा। सच्चा विद्वान वो नहीं है जो ज्ञान प्राप्त करता है ज्ञान का प्रदर्शन करता है बल्कि वो है जो हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने की विनम्रता रखता हो
1: जी।
0: तो ये हमारे गुरुजनों से हम पूछता है
1: जी।
0: ऐसे अनेक चीजें हैं आपका समय समाप्त हो रहा है
1: जी जी
0: ज्यादा समय नहीं होगा
1: नहीं नहीं
0: जो भी कुछ सीखा है हमारे गुरुजनों कहना है उसको अपने तक सीमित मत रखो उसे सरल भाषा में समाज तक पहुंचाओ। ये तुम्हारे ज्ञान से किसी एक व्यक्ति का जीवन भी सकारात्मक परिवर्तन में बदलता है तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी साधना होगी।
1: जी हृदय जी हृदय तल से एक बार फिर तहे दिल से आपका शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े। हम कामना करेंगे कि आने वाले शोज में आप जरूर हमारे साथ जुड़े चाहे आप एक घंटे के लिए ना जुड़े हम आपको आमंत्रण देंगे चाहे आप आधे घंटे के लिए जुड़े बट जो आपकी वाणी है वो यहाँ दिल तक पहुंचती है और ये कार्य हम अपने देश के लिए करें इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। देशवासियों के लिए करें अपने जो अखंड भारत है उसके लिए ये कार्य करें ताकि हम एकजुट रहें और हम अपने धर्म का जो परचम है, जो उसका जो झंडा है, वो हम सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित कर सकें। और इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप हमसे जुड़े, और उम्मीद करते हैं कि आगे आपको हम फिर आमंत्रण देंगे। भास्कर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा।
2: जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

हो तो ये लगता है कि यहाँ मिल गया।

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 एफएम रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: दिलों में प्यार का जज्बा जगाए रखता है, ये रेडियो ही है जो अपनों को मिलाए रखता है। आपकी धड़कन, आपकी पसंद और आपकी आवाज, रेडियो विदस्ता हर पल ये रिश्ता निभाए रखता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का FM 90.0 MHz पर। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट कृष्णा,
1: और मैं हूँ आपकी हमकदम आपकी सहेली नैना। आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और शुभ दिन।
0: बिल्कुल, और नैना सच बताऊं तो इस एक दिन का, इस खास पल का हमें पूरे हफ्ते बेहद बेसब्री से इंतजार रहता है।
1: अरे हाँ कृष्णा जी, सिर्फ तुम्हें ही नहीं हमारे तमाम सुनने वालों को भी इस दिन का इंतजार रहता है, क्योंकि आज का दिन किसी आम दिन जैसा नहीं है। आज का दिन है हमारे जज्बातों का, आपकी पसंद का। आज वक्त है आपके पसंदीदा शो आपकी फरमाइश का।
0: हफ्ते भर का इंतजार और यादों का ये कारवां आपकी फरमाइश लेकर आ गया है फिर से यहाँ। जी हाँ, पूरे हफ्ते हम आपके संदेशों का इंतजार करते हैं, क्योंकि आपकी जो फरमाइशें होती हैं वो सिर्फ गानों की डिमांड नहीं, बल्कि आपके दिल के खूबसूरत भाव होते हैं, आपकी मोहब्बत और आपकी यादें होती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा कृष्णा जी, और हमारी बस यही एक छोटी सी प्यारी सी कोशिश रहती है कि आपके दिलों के इन खूबसूरत भावों को, आपके दिलों की इस छुपी हुई आवाज को अपने रेडियो तरंगों के जरिए सुरों में पिरोकर वापस आप तक पहुंचा सकें।
0: तो बस आज के इस सफर में मैं यानी कृष्णा रहूंगी आपकी मुख्य संचालिका,
1: और हर कदम पर, हर फरमाइश पर आपका और कृष्णा जी का साथ निभाऊंगी मैं यानी आपकी रेडियो दोस्त नैना।
0: किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सुरमई शाम हो और अपनों का साथ हो, सुरमई शाम हो और अपनों का साथ हो, तरंगों पर बहती हुई कोई खूबसूरत बात हो। तो चलिए बिना देर के खोलते हैं फरमाइशों का ये खूबसूरत पिटारा और शुरू करते हैं आज का ये सुहाना सफर। सुनते हैं आज का पहला गाना आप ही की पसंद का सिर्फ FM 90.0 रेडियो विदस्ता पर।

0: बर्थडे क्रिसमस के बाद आधे गाना सुना तुम्हारा। ये लो नोटा। अरे इस घर में बहुत कुछ है, बादाम, पिस्ता, काजू, गर्मा गर्म समोसे।
1: मैं इस घर का नमक नहीं खाऊंगा।
0: अरे नमक नहीं खाओगे तो मत खा। इस घर में बहुत कुछ है, केक भी है, हलवा, बादाम।

0: उम्मीद करते हैं आपको ये गीत पसंद आया होगा। इसकी फरमाइश हमारे पास आई थी पूजा विहार अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता थे प्रेम राजपूत, सुमेश कुमार, रोहित दिलबाग, शम्मी और अनु जैन। ये गीत था फिल्म 10 नंबर से, जिसे अपनी आवाज दी थी मुकेश ने। लेती हूँ अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है प्रिंस तेजा मोहड़ी अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है बंशी लाल संधु। ये सुनना चाहते हैं फिल्म ए फूल दो माले का गीत। गीत के बोल हैं ये पर्दा हटा दो। इस गीत को अपनी आवाज दी है आशा भोसले जी ने और मोहम्मद रफी ने। इस गीत को सुनने वाले अन्य श्रोता हैं कबीर सिंह संधू, जसबीर सिंह संधू, वरनीत कौर, पवनीत कौर संधू और सारा संधू परिवार। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये मधुसा गीत।
1: ये पर

0: हटा दो।
1: लेते हैं अगली फरमाइश जो आई है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। यह सुनना चाहते हैं फिल्म फांसी से गीत। गीत के बोल हैं जब आती होगी याद मेरी, तेरा दिल तो धड़कता होगा। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित ने। पेश है इन सभी का फरमाइशी गीत।

पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से। भेजने वाले श्रोतागण हैं विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आंसू बन गए फूल का गीत। गीत के बोल हैं जाने कैसा है मेरा दीवाना। गीत को आवाज दी है किशोर कुमार और आशा भोसले जी ने। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये खूबसूरत सा गीत।

लेते हैं अगली फरमाइश जो आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और साथ ही मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मुरहेकर। यह सभी सुनना चाहते हैं फिल्म हमराज से गीत। गीत के बोल हैं नीले गगन के तले। इस गीत को आवाज दी है महेंद्र कपूर ने। तो आइए सुनते हैं इन सभी का फरमाइशी गीत।

लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है चंद्ररूप नगर बबियाल अम्बाला केंद्र से। भेजने वाले श्रोता हैं मदन गोपाल सैनी जी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म मेरे महबूब का गीत। गीत के बोल हैं याद में तेरी जाग जाग के हम। इस गीत को अपने मधुर आवाज से संवारा है लता मंगेशकर जी ने। तो पेश है मदन गोपाल जी की फरमाइश का एक खूबसूरत गीत।

तो लेते हैं अगली फरमाइश जो आई है हमारे पास अंबाला कैंट। भेजने वाले श्रोता का नाम है स्नेहा, जो सुनना चाहती हैं फिल्म बरखा से गीत। गीत के बोल हैं तड़पाओगे तड़पालो। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने, तो आइए सुनते हैं।

चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि एक भक्ति संगीत है, जिसकी फरमाइश हमें आई है अम्बाला कैंट से। भेजने वाली श्रोता है मंजू, ये सुनना चाहते हैं भक्ति संगीत मानो तो मैं गंगा माँ हूँ। पेश है मंजू जी का एक खूबसूरत सा भक्ति पूर्ण गीत।

तो पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है अम्बाला सिटी से। भेजने वाले श्रोता हैं शगुन गोडियाल। यह सुनना चाहते हैं फिल्म अखियों के झरोकों से गीत। गीत के बोल हैं अखियों के झरोकों से। इस गीत को अपनी आवाज से संवारा है हेमलता ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का फरमाइशी गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। जारी है प्रोग्राम आपकी फरमाइश। अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें भेजिए अपनी फरमाइश गीत के बोल, बोल के साथ अपना नाम और अपने दोस्तों का नाम हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर से 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। तो चलिए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो हमारे पास आई है दयालबाग अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है हनी और ये सुनना चाहते हैं फिल्म जुगनू का गीत। गीत के बोल हैं तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए। इस गीत को अपनी आवाज से संवारा है किशोर कुमार ने। तो पेश है इनकी फरमाइश का ये खूबसूरत सा गीत।
1: अरे वही तो है

लेते हैं अगली फरमाइश जो आई है कोलकाता से। सुनने वाले श्रोता हैं राजीव, वैशाली, मिनी और विराज। यह सभी सुनना चाहते हैं फिल्म डार्लिंग डार्लिंग से गीत। गीत के बोल है ऐसे ना मुझे तुम देखो। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार ने। तो आइए सुनते हैं इन सभी का फरमाइशी गीत।

लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है धनवारी तेलीवाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोतागण हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म बेटी बेटे का गीत। गीत के बोल हैं, अगर तेरी जलवा नुमाई न होती। इस गीत को अपनी मधुर आवाज से संवारा है मोहम्मद रफी साहब ने। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये खूबसूरत सा गीत।

चलिए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो हमारे पास आई है मुंबई से। भेजने वाले श्रोतागण है मिट्टू, पूनम, राशि, सुनीता, किरण, सुजीत और शानू। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मंजिल का गीत। गीत के बोल हैं रिमझिम गिरे सावन। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये प्यारा सा गीत।

0: ये था आज की फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
1: मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगा हर्ट्स पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, Hamsafar, Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह। रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 705641310 पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 705641310 पर।
3: सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात, जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर, जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो हितसत्ता सुनना भूलना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो हितसत्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो हितसत्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला केंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: Hey, ताजमहल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

मन खातर अरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: रहो अपने पसंदीदा की।
1: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 7। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है दोस्ती और रिश्ता। प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी। रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, कार्यक्रम लिखा और निर्देशित किया आरजे किरणी ने।
3: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का रेट्रो हिट्स है दोस्ती और रिश्ते स्पेशल। दोस्तों और अपनों के रिश्ते ही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। आज हम उन्हीं रिश्ते के अनमोल जज्बात को महसूस करेंगे। जब दोस्ती का रिश्ता मजबूत होता है तो फासले और वक्त सब बेकार होता है।

दोस्ती में होती है ईमानदारी, इसमें दुनियादारी नहीं होती। दोस्ती एक राज है जो खुलता नहीं, ये वो दीपक है जो बुझता नहीं।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

धीरे धीरे ये सारे मौसम बदलते रहे, पर तुम्हारे लौटने के इंतजार का मौसम अभी लुप्त हो चुका है और दरियाओं की रवानी थम चुकी है। अब के सावन में बर्फ पिघलते ही शायद तुम लौट आओ, मेरे पतझड़ की वीरानी को दूर करने के लिए। मोहब्बत अब बेजुबान है, खामोश साहिलों में पानी की तरह है।

ये रात है खामोश और आज की शब ये सितारे बिना चांद के तन्हाई महसूस कर रहे हैं।

इस शब की खामोशी को चीरती हुई तुम्हारी दर्द भरी आवाज मुझे तुम्हारे पास पास होने का एहसास कराता है। पर क्या तुम हो मेरे हमनवा हमराज? शायद इस बात का अंदाजा लगाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि तुम अक्सर गुम हो जाते हो मेरी तन्हाइयों को चीर कर, और इस खाली शब के इन अंधेरों में मैं ढूंढता हूं चांद को जो आज कहीं खो गया है।

होते दिलों के एहसास को महसूस करने के लिए हमारी नजदीकियां अक्सर उड़ान तो भर लेती हैं पर गहराइयों को छू नहीं पाती। शायद यही से जिंदगियों ने तड़पना शुरू किया है। एक सहारे की जरूरत है हमारे आने वाले कल को, क्योंकि बेपरवाह इन काफिलों में हम ही सर फिरे थे जो तुम्हारे उम्मीदों में गुमनामी की जिंदगी काट रहे हैं। यह सोचकर कि वो मेरा दामन भर देगा अपनी रहमत से, करम अपनी नवाजिश अपनी मेहर से।

सफर रहा हमारा अधूरा, शायद कुछ उलझने पड़ी हैं सरे रहा, जो थाम लेती हैं दामन बेवजह। बेवजह क्यों यह सूरज मेरे सफर में मेरा साथ छोड़ देता है और मैं परछाइयों के हमराह अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता हूं, यह सोचकर कि शायद मेरा यह अधूरा सफर मंजिल के साथ साथ मुझे मेरी खोई हुई पहचान वापस दिला सके।

मेरे शब्दों में तुम्हारे नाम की दीवानगी हमेशा महफूज रहती, जो तुम मेरी ढलती उम्र को अपनी पनाह में लेते, मेरे गुनाहों को अपने आंचल में छिपा लेते, मेरी दर्द को अपना दर्द समझते, मेरी परेशानी में मेरे हम कदम साथ साथ चलते चलते मेरे हमराह मेरे सफर के आखिरी पड़ाव तक, जहां से हमारे तुम्हारे बीच पन पे एक नए रिश्ते की शुरुआत हो।

दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। इजाजत, नमस्ते।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्था के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं, अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। हम बात करते हैं वो जो रखती है आपसे सरोकार। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:38। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त भारत सोपोरी। रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आज का हमारा और आपका साथ यहीं तक था। शुरू और बातों की इस महफिल को अब विदा कहने का वक्त आ गया है, पर आज के विषय पर बात करना चाहूंगा और साथ में बताऊंगा कल के कार्यक्रमों का विवरण और साथ में अपना स्टूडियो का नंबर भी, जहां पर आप अपनी जानकारी हमें भेज सकते हैं। श्रोताओं, आज रेडियो वितस्ता पर वक्त है एक बेहद जरूरी विषय पर बात करने का। आज वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस यानी इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण के गंभीर खतरों से बचाने और लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करना है। आइए हम बात करते हैं इस विशेष रिपोर्ट की। क्यों मनाया जाता है ये दिन? एक सिंगल यूज प्लास्टिक बैग यानी सिंगल यूज प्लास्टिक बैग को बनाने में महज कुछ सेकंड लगते हैं। हम इसका इस्तेमाल कुछ मिनट के लिए ही करते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह नष्ट होने में 500 से 1000 साल का लंबा वक्त लग जाता है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी एक छोटी सी लापरवाही पर्यावरण को कितना भारी नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण के भयानक प्रभाव कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, प्लास्टिक कचरा हमारी नदियों, इमारतों, खूबसूरत वादियों को प्रदूषित कर रहा है, जिससे प्राकृतिक जल स्रोत दम तोड़ रहे हैं। दूसरा, रास्तों और कचरे में फेंके गए प्लास्टिक बैग्स को कई बार बेजुबान जानवर भोजन समझकर खा लेते हैं, जो उनकी मौत का कारण भी बनता है। तीसरा, प्लास्टिक जब छोटे टुकड़ों यानी माइक्रो प्लास्टिक में टूटता है तो ये हमारे भोजन में और पानी के जरिए सीधे हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, जो गंभीर बीमारियों को दावत देता है। बदलाव की शुरुआत कानून से नहीं, बल्कि हमारे और आपके जागरूक होने से होगी। आज रेडियो वितस्ता आपसे कुछ छोटे संकल्प लेने की अपील करता है। नंबर एक, जब भी बाजार जाएं, दुकानदार से प्लास्टिक बैग लेने से साफ मना कर दें। दो, हमेशा अपने साथ कपड़े या जूट का थैला साथ रखें। प्रकृति ने हमें एक बेहद खूबसूरत और साफ सुथरी धरती सौंपी है। आइए इस प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कचरे का ढेर नहीं बल्कि एक हरा भरा और स्वस्थ पर्यावरण देने का वादा करें। श्रोताओं, सुरीले गीतों, दिलचस्प कहानी और पर्यावरण की इस अवेयरनेस के साथ अब वक्त हो गया है कि हम आज इस खूबसूरत सफर को विराम दें। आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। चलते चलते आज की खूबसूरत रात और हमारे इस प्यारे रेडियो स्टेशन के नाम एक विशेष विदाई शायरी। हर दिन की तरह आपके लिए मैं कुछ पंक्तियां लाता हूं और आज की पंक्तियां यूं हैं। तरंगों के सहारे दिलों में जो उतर जाती है, तरंगों के सहारे दिलों में जो उतर जाती है, ये वो सदा है जो हर महफिल को महकाती है। यूं तो थम सा जाता है रातों का सफर ए दोस्तों, यूं तो थम सा जाता है रास्तों का सफर ए दोस्तों, पर रेडियो वितस्ता की गूंज कल फिर लौट आती है। जी हां श्रोताओं, ये थी आज के पंक्तियां। और जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 4 जुलाई 2026 शनिवार को जो कार्यक्रम हम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर वंदे मातरम से और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार। और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ।
छह बजे भक्ति संगीत, 7:05 पर होगा कार्यक्रम सरगम एपिसोड 5। पेश करेंगे आरजे किदनी और 8:30 आप सुनेंगे सकारात्मक कहानी का एपिसोड 7। सही चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। इस कहानी को आप सुनेंगे सुबह 8:30 और 9:30 बॉलीवुड की सुनहरी यादों का कार्यक्रम होगा लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का, और संगीत की सभा जारी रहेगी और 6:00 भक्ति संगीत, शाम के 6:30 शाम में गजल और 7:00 होगा रेट्रो हिट्स एपिसोड 4, शीर्षक होगा बाबुल। पेश करेंगे आरजे किरणी और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा और कल की कड़ी है तन्हा तन्हा। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप कल के कार्यक्रम भी पसंद करेंगे और आज की तरह हमारा साथ भी देंगे। आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजिएगा हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, प्लास्टिक को अलविदा कहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भारत सोपोरी और चाहूंगा आपसे आज्ञा इजाजत। तो इसी के साथ कल सुबह मिलने के लिए आज के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।